संध्या 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शो चली छे सोरी आफ्टरनून ना मु अछि आपन को रेनबो साथी शुभश्री आज आपन को साथी रे फ्रेंड्स आपन समस्त तो जानंती जे ए जो खरार प्रकोप बढ़ी जाय छे से पई पिला को समर वेकेशन टिके किछि दिन पूर्व रो स्टार्ट हो जाय छे आ समर वेकेशन स्टार्ट माने पिला को पाठ पढा हे जाय टिके कम आ मस्ती हे जाय टिके अधिका काहे कि ना पूरा वर्ष जक रे एटा ही त थाए सबटु लंबा छुट्टी पिला को पई सो पिला माने ए छुट्टी रे करि थांदी टिके अधिका मस्ती आउ समर वेकेशन स्टार्ट हेले माने स्कूल ट्यूशन सबरु मिल जाए तांको छुट्टी आउ स्कूल ट्यूशन छुट्टी माने पिलांको मिल जाए पाठ पढारु टिक्के मुक्ति

मैक्स अति ट्यून कर छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक तमान शो चली छे सुरीला आफ्टरनून आ सुरीला आफ्टरनून शो ने मो अच्छे अपन घरे रेनबो साथी सुबश्री अपन को साथी रे खरा दिनी

0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜୀବନରେ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କାମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସକାଳ 6ଟାରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ଯାହାକୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने

0: वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनुले हिंदी संवाद रिले करी प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

अथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे निळात्रे शंख मध्ये सतदळ कमळे रत्न सिंहासन स्तम सर्वलंकार युक्त नवघन रुचिरं संयुक्त चाक्रचेन भद्राया बाम भागे रथ चरण जूतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वंद्यम

चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणजूतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वंद्यं वेदानां सरमिसं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु भजे अहम्। हे प्रभु श्री जगन्नाथ, तुम्हें ही नयन पथगामी मोर। प्रभु श्री जगन्नाथ सर्वव्यापी, केवल श्रीमंदिर नुहे बर आम ओडिशार प्राय सबु स्थान विभिन्न नाम पूजार्चना कराए। श्रीमंदिर पर सब मंदिर मानक बहु रीतिनीति पालन कराए। परम ब्रह्म श्री रूप ही प्रभु श्री जगन्नाथ। महाप्रभु अपार करुणार अंधवी दर्शन करिपारे तांको। ता कंठरे झरी पड़े भक्ति गद गद स्वररे भजनर झंकार। अंतह चक्षुरे से भगवानंकर दर्शन करिपारे, स्पर्श मध्य अनुभव करिपारे। महाप्रभु हेउछंती सत्य, शिव एवं सुंदरा।

जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ब्रह्माण्डर नाथ सृष्टिकर्ता परमेश्वरंकर दिव्य दृष्टि कथा जदि भाविबा ताले हृदय मन बेले बेले तांकरी श्रीपाद पद्मरे अवनत होई पड़िथाए। श्री करुणामय परम ब्रह्म दारु ब्रह्मंकर अनंत असीम महिमा कथा भाविले हृदय तन्मय होई उठे। महाप्रभु कृपामयंकर कृपालाभ करी भक्तटीर सब दुख दूर हो जाए। मन मध्यरु समस्त असंतोष विदूरित होई हृदय परम शांति लाभ करी थाए। केवल प्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा लाभ कले मन पवित्र हो जाए, जीवन शुद्ध हो जाए।

म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आपण मानक स्वागत श्रोता बंधु आपण मानक पाई वर्तमान रही आज सकाळ रो किछि अपडेट्स आज कटक भुवनेश्वर आउ आखपाख अंचल रे पाणीपाग विषय रे चति कहिबि सर्वाधिक तापमात्रा आज 35-36 डिग्री सेल्सियस रही पारे और सर्वनिम्न 25-26 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना अछि। दिन रे हालुकारु मध्यम वर्षा बा वज्रपात भी हेई पारे संभावना रहिछि, किंतु आज आकाश टिके आंशिक मेघाछन्न रहिबो। वज्रपात वर्षार संभावना तो रहिछि रहिछि। आर्द्रता आज प्राय 70% रही पारे। पवन हालुकारु मध्यम बही पारे एवं गरम आ आद्र निश्चय रहिबो, किंतु जदि वर्षा आ पवन हेला ताहाले टिक्के हल्का फुल्का आपणको अनुभूत हेई पारे। तबे आजर पानी पाग को ध्यान रे रखिकी गोटे कथा आमको मन रखिबाको पड़िबो, जेतेबेले भी आमे बाहर को बाहरुचे छता कैप व्यवहार करिबाको पड़िबो, सनस्क्रीन लोशन लगेबाको पड़िबो, आ हालुका ढीला पोशाक प्रत्येक समय रे पिंधंतु, खरा दिने आपनको आराम मिलिबो। पानी पिउथिबा बेले दिन रे बारंबार पानी पियंतु, ओआरएस नडिया पानी ए सब आपन पी पारिबे। हाइड्रेशन आपनकर भल बॉडी एसबु द्वारा आउ डिहाइड्रेशन रु आप दूरे रहिबे। वर्षा पई भी आप प्रस्तुत होकर घर बाहर कहीं वर्षा हबार जेहेतु संभावना अच्छी, छता ना रेनकोट सांगे रखि था। आउ वज्रपात जदि होपण कौटी रास्ता घाटे अच्छा खुला जगार न रही आपण को रिक्वेस्ट करी बेसी समय बाहर रहिबाकु एडांतु, बाहर बुलाबुली करिबा कि खरारे कुआडे जिबा ए सब टिके अवॉइड करंतु। भोर आउ संध्या रे निजर सब काम को सारिबाकु चेष्टा करंतु। आउ दिन 12टा नै दिन 3टा पर्यंत टिके अवॉइड करंतु बाहर को बाहरिबा पई। श्रोता बंधु आपण माने जदि ए सब छोट छोट कथा को मन रखिबे ताहाले निश्चय बहुत भलरे आपणक दिनटी बितिबो। आज हेउछि मे मास 2 तारीख, आउ आज विश्व टुना दिवस पालन करा जाउछि, वर्ल्ड टुना डे। माने टुना हेउछि गोटे माछ, आउ माछ आउ सुस्थाई माछ धरा विषय रे सचेतनता बढ़ेबा पई कि आज रे दिनटी को व्यवहार माने पालन करा जाउछि। ता सहित इंटरनेशनल हैरी पॉटर डे, आज हैरी पॉटर कहानी को स्मरण करा जाय थाय आज रो ए दिन रे। ता सहित आज सत्यजित रॉय कर बर्थ एनिवर्सरी मध्य अछि। आज रो ए खास दिन रे जदि आपणकर मध्य किछि खास कथा थिबो, आज आपणकर हैप्पी बर्थडे थिबो कि आपणकर आज मैरिज एनिवर्सरी थिबो, तबे खूब धूमधाम रे खुशी रे सहित पालन करंतु। जीवन रो प्रत्येक मुहूर्त हेउछि आम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण, आउ एबे जो मुहूर्त रे आमे अछि से मुहूर्तटा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। तेनो आज रो ए दिनटी को खूब खुशी रे सहित पालन करंतु, चेष्टा करंतु आपणक दिन बहुत भलरे केमिति बितिबो। जदि भी किछि खराब समयर सामना करबा को आपणक पडुछि ताहाले धैर्यर सहित करंतु, देखिबे सबो किछि ठीक रहिबो। सबो बेले सकारात्मक रहंतु, आपणकर दिन कोन आपणकर जीवन सकारात्मक होइ जिवो, खुशी रे भरि जिवो। श्रोता बंधु ये तो थिला आज दिन रो आज सकाळ रो किछि अपडेट्स आपण मानक पाई। सकाळ 7टा रे आपण माने सुनि परिबे संस्कृत रे संवाद, जहा करिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो। तेबे आउ डेरी करिवानी, वर्तमान आपण मानक पाई किछि संस्कृत रे संवाद अछि, ताको सुनि नेबा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो। परे परे आपण मानक पाई आउ अनेक गुडीए कार्यक्रम रहिछि, तेबे सुनु थांतु एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। वर्तमान आपण को नै जाउछि हमर दिल्ली स्टूडियो को।

0: केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पंचायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते। आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पंचायती राज मंत्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या उद्देश्यैः परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति। पंचायती राज मंत्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति। एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामानां च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति। मोरारजी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं सप्त स्तोभैः पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं सार्ध सप्तवादने चेन्नई स्थे एमए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: শুনুলে আপনার সংস্কৃত সম্বাদ রিলে করে প্রচার করলু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্ররূপ।

0: श्रोता बन्धु एठे शेष करिबा अमर शुभ सकाळ कार्यक्रमको अमर परवर्ती कार्यक्रम पूर्वरु आपण मानक पई रहिछि सकाळ 8टा रे हिंदी रे संवाद एवं परे परे सुनि परिबे इंग्रजी रे संवाद जहाको रिली करि प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररो तबे आसंत वर्तमान सुनिबा हिंदी रे संवाद
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र राजस्थान

0: महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

0: ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन ये को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिन्दुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब

0: विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्ते के शब्द हैं मां की ममता लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Pashchim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallo Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the apex court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay.
4: Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states and union territories. More on this from our correspondent.
5: Ministry of Home Affairs said that the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will undertake house-to-house visits for data collection. Meanwhile, self-enumerators

ग्रीष्म छुट्टी हो जाए तो ए टाइम रे पाठ पढ़ा सहित केमिति एंगेज रखिबे आ सबटु बड़ कथा कोन कहले पूरा वर्ष सारा छुआ माने पाठ पढ़ंती से मानको बिल्कुल समय मिलुनी आज कल ना खेलिबा को ना किछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करिबा को तो ए जो समर वैकेशन टाइम टा थाए ना स्कूल ट्यूशन प्राय सब किछि बंद हो जाय थाए तो घरे रहिके पिला माने निजर होमवर्क त करंती ता सहित जो थे भी रुचि रही जमीती कहार ड्रईंग रही कहार सिंगिंग रही कहार कंप्यूटर रही कहार स्पोकन इंग्लीश रही बहुत किसी जिन अच्छी कहार स्विमिंग रही सब जिन ट्राए करें समर वैकेशन समर वैकेशन यू मान नुआ कौशल किसी शिखापी नुआ दक्षता किसी वृद्धि करने कि बहुत भल टाइम तेणुक यू कम निज छुआ मान एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो थे इंटरेस्ट अच्छी से एंगेज करातु बेसी नीनिमास दुई मस रोटे मस समर एक्टिविटी क्लास को पठातु बहुत एंजय करेंगे से मैंने आउर किसी नुआ शिखा और दक्षता बढ़ बढ़ वेल बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन अच्छी छुआ मानी एबिका टाइम जिते बड़े पाठर बोझ बहुत बढ़ी गला समर वैकेशन को मध्य एंजय कर पार ना तो ए टाइम ने आम आउ कौन करें कहीं आम कुनि कुनि पिला मानक आम उत्साहित करवा कि नुआ बही पढ़ंतु पुस्तक पढ़ा गोटे बहुत भल अभ्यास निज पाठ छड़ा आउ पाने आजिकल कि पढ़ापाई कि पसंद भी करूना कि टाइम भी पाखे हो समर वैकेशन गोटे एमती समय जो छुआ मान को टाइम मिल जाए तो किसी स्टोरी बुक है किसी कहानी पुस्तक किसी साहित्य कि किसी जनरल नॉलेज बढ़ेला भले किसी पुस्तक किसी भल भल कमिक बुक जो गुड़ा कि तांको बहुत भल लगे से सब बही पढ़ापी उत्साहित करूँ देखिए से माने बहुत एंजय करेंगे आहित कि नुआ शिक्षा मिल जा बहुत ही सुंदर सुंदर कथ रही आईडियाज रही जहाँ आम समर वैकेशन यूज कर सब विषय आगक कथबार्ता जारी रर्तमान गोटे लवली ट्रैक।

हिंदुस्तान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: आपसे भी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के।
1: सुनिले साप्ताहिक इंग्राजी कार्यक्रम स्टम्प्ड रिले करी प्रचार करिलु आकाशवाणी दिल्ली।

बेचैन मोते मध्ये करि दैछि काहेकि ना मोर परीक्षा सरी जाइछि रिजल्ट मध्ये बाहरिबार समय पाखे आसिलानी किंतु पाखरे किछि गोटे भी आइडिया नाही जे रिजल्ट बाहर सल्ला परे मु क्यों कोर्स करिले मोर लाइफ सेटल हे जिवो क्यों कोर्स करिबा दरकार कोन पाठ पढिबा दरकार ना मोर पाठ कंप्लीट हे सल्ला परे मु कोन बिजनेस आरंभ करिवे किबा मोर कोनोसी चाकरी रे जॉइन करिवे किबा चाकरी पई मु अप्लाई करिवे से सबर आईडिया पई मु पूरा चिंतित हे रहि छी सो आपनो क्षेत्र रे एंते भी होउछ कि सिउली अछि ना टेंशन लेने का नहीं ओके सो सिउली अछि माने किछि खास कथा हेबो खास गीत मध्ये सुनैबो गीत तो मीठा मीठा रही छी आपन को पई किंतु साथी टिके चिंता करंतु तो जे परीक्षा सरी जाइ छी टेंशन फ्री लागुथिबो रिजल्ट बाहरिबा दिन मन रे नाना रकम रा आइडिया सब रहितै जेमति कि एई रिजल्ट जदि भलो हेला मु नेक्स्ट डे कोर्स टी करी भी नेक्स्ट से कोर्स करी भी नहले आमर प्रियजन आमको बहुत किछ आइडियाज मध्ये दे थांती ए कोर्स करो नहले से पाठ पढ़ो आउरी बहुत सारा किछ आइडियाज किंतु मु जदि कहिबी जे अन्य माने कोन कहउछंती से गुडी को ठीक अछि ताकु मध्ये से आइडियाज गुडी को आपण पाखरे रखंतु किंतु केउ सब्जेक्ट किंबा केउ काम रे आपण आग्रह रखुछंती सेथिरे आगो फोकस करबा दरकार ताहले सक्सेस आपनको पाखरे ही जल्दी पहुंची जीवो।

0: ସାଥୀ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय

0: तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले दो घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission of India's decision to appoint only

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।

0: भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग

0: करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान

अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जरूर करी होगी। हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया, ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बहुरा। मुख्य संवाद, मौसुमी और अणमौसुमी ऋतु में महानदी जल प्रवाह नहीं ट्रिब्यूनल को अवगत कराइले ओडिशा और छत्तीसगढ़, चलित मास 30 तारीख में परवर्ती शुनानी। माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित मैट्रिक परीक्षा फल आउ किछि समय पर प्रकाश पाइब। जातीय शिक्षानीतिर कार्यकारिता और कार्यान्वयन संपर्क में भुवनेश्वर से आरंभ होइछि दुईदिनिया प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशाला एवं विपर्यय सतर्कता नहीं देशवासी त्वरित सूचना प्रदान करने लक्ष्य रे सेल प्रसारण व्यवस्थार परीक्षा। महानदी जल विवाद मामलें आज ट्रिब्यूनल शुणाणी होइछि। ट्रिब्यूनल पूर्व निर्देश अनुयायी उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ पक्षर् मौसुमी और अणमौसुमी ऋतु में जल प्रवाह नहीं अवगत करा। उभय पक्ष मध्यरे आपोष बुझामणा नहीं वैषयिक स्तर में आलोचना कराजिबाकु ट्रिब्यूनल को सूचना दिया जाइछि। ओडिशा पक्षर् अटर्नी जनरल पीतांबर आचार्य तथ्य उपस्थापन करिथिले। चलित मास 30 तारीख में महानदी जल विवाद मामलार परवर्ती शुणाणी पई समय धार्य करा जाइछि। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा फल आज अपराह्नरे प्रकाश पाइब। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुजाई मैट्रिक सह राज्य मुक्त विद्यालय एवं मध्यमा परीक्षा फल मध्य आज प्रकाशित हेब। प्राय 560,000 छात्रछात्री चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा देइथिले। चलित थर छात्रछात्री माने मैट्रिक सर्टिफिकेट आसंता सोमवार ठारु वेबसाइट डाउनलोड करिपरिबे एवं एक मास मध्यरे विद्यालयरु प्रमाणपत्रर हार्ड कॉपी नेइपरिबे बोली बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहिछन्ति।
2: बोर्ड हेडक्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हे आमर अनरेबल मिनिस्टर शासन सचिव महोदय विद्यालय विभाग उपरिस्थ अधिकारी मैंने उपस्थित रही 560,000 पाखापाखि पिला परीक्षा देते से रेजल्ट प्रकाश करू पाने रेजल्ट जो मोबाइल अच्छी आम बोर्ड वेबसाइट अच्छी माध्यम जानपर।
1: छात्र छात्री मैंने SMS जरिया परीक्षा फल जानपर। मोबाइल मेसेज बक्स OR10 ओ तापरे निजो रोल नंबर लिखि 5677750 को पठाइले परीक्षा फल जानी हेबो। संध्या 6टा परठारु छात्र छात्री माने बोर्ड वेबसाइट BSEodisha.ac.in ओ BSEodisha.nic.in रे परीक्षा फल देखि परिबे। चलित वर्ष प्रथम थर पई छात्र छात्री माने उभय ओडिया ओ इंग्रजी भाषा रे मैट्रिक सर्टिफिकेट पाइबे। अन्यपक्षरे युक्त दुई परीक्षा फल चलित मास तृतीय सप्ताह प्रकाश पाइब बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछन्ति। चलित वर्ष फेब्रुआरी मास 18 तारिखरु युक्त दुई परीक्षा आरंभ होई मार्च मास 28 तारिखरे शेष होइथिला। 4,01,000 अधिक छात्रछात्री युक्त दुई परीक्षा देइथिले। भुवनेश्वर लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर रे जातीय शिक्षा नीति 2020 रो कार्यकारिता एवं कार्यान्वयन कर्मशाला आज आरंभ होईछि। राज्य उच्चशिक्षा विभाग आनुकूल्य आयोजित एही दुईदिनिया कर्मशालार प्रथम दिन रे प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशाला उद्घाटित होईछि। कार्यक्रम रे जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ति जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी करिबा क्षेत्र रे ओडिशा आज अग्रणी राज्य भाबे वैप्लविक परिवर्तन आनिछि। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଏକାଠି

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो,

लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। थकान, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसका कारण अभी तक अज्ञातिक नहीं है। हालांकि यह पहले की किसी संक्रमण से संबंधित हो सकता है। थकान ऐसी स्थिति है जो चाहे महीने या इसमें अधिक समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूद रहती है और याददाश्त संबंधी या एकाग्रता संबंधी समस्याओं के साथ होती है। थकान के जोखिम कारक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिकांश 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 4 गुना अधिक होती है। थकान का निदान 5 से 6 लक्षण के निदान से होते हैं। इसका अपना कोई निश्चित परीक्षण नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षण का उपचार किया जा सकता है और इससे ग्रस्त लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। भारत में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हजारों लोगों को प्रभावित करता है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। एक भारतीय अध्ययन के मुताबिक 12% भारतीय महिलाओं को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होने का अनुमान लगाया गया है। ये सिंड्रोम शुरू होने की औसत उम्र 30 से 40 वर्ष है। ये कम आयु वर्ग के लोगों में अधिक आम

इसके लक्षण प्रतिदिन बदल सकते हैं और उनका आना जाना हो सकता है। थकान के बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित करने वाले कुछ लक्षण अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। तो पहला लक्षण है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक थकान, मानसिक थकान या दोनों। ये स्थिर हो सकते हैं या बार बार इनका आना जाना भी हो सकता है। यह आराम से ठीक नहीं होता। थकान इतनी गंभीर भी हो सकती है कि ये आपको दिनचर्या के काम और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस करना, नींद की समस्याएं, अलग अलग या एक जगह दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, एकाग्रता, याददाश्त की समस्या या सही शब्द सोच पाने में समस्या, प्रकाश, शोर या भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भ्रम, सोचने की क्षमता में विलंब या गुमराह महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी या समन्वय की समस्या। थकान के अलग अलग लोगों में विभिन्न लक्षणों के संयोजन होते हैं, जैसे चक्कर आना, दिल की धड़कन में तेजी या काम करते समय सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा पेशाब आना, मतली या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शरीर के तापमान में गिरावट, हाथों का ठंडा होना और पैरों में पसीना आना, तनाव के दौरान बुरा महसूस करना, वजन में या भूख लगने में बदलाव। थकान के साथ अवसाद होना आम है और इससे थकान के लक्षण बेहतर हो सकते हैं। थकान से ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों के समान है, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में। सालों के अध्ययन के बाद भी थकान का कोई ज्ञात कारण आज तक शोधकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि लोगों में थकान के साथ कई बीमारियां देखी गई है, लेकिन इसके विकास के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोग नियंत्रण केंद्र CDC से पता चला है कि शोधकर्ता अभी भी थकान के कारणों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्ययन किए गए कुछ कारकों में शामिल है वायरल संक्रमण। कुछ लोगों को वायरल संक्रमण होने के बाद थकान होती है, इसीलिए शोधकर्ता इसे भी उन कारकों में से मानते हैं जिससे थकान हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन-बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस, माउस ल्यूकेमिया वायरस थकान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। थकान से ग्रस्त लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कारण थकान होने के लिए पर्याप्त हो गई है। थकान से ग्रस्त लोगों को कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन के असामान्य रक्त स्तरों का अनुभव होता है, लेकिन इन असमानताओं का कारण अभी अज्ञात है। थकान के जोखिम को बढ़ाने के कारक अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। पहला है आयु। थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह सबसे सामान्य रूप से 40 और 50 की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थकान ज्यादा होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास अधिक जाती है। तनाव के कारण भी थकान हो सकती है। वर्तमान में थकान के स्पष्ट करना ज्ञात न होने के कारण इसकी रोकथाम के तरीके भी नहीं मिल पाए हैं। हालांकि चिकित्सक ऐसे बचने के लिए कुछ जीवन शैली व बदलाव करने की सुझाव देते हैं, जैसे तनाव को कम करें, अत्यावश्यकता और भावनात्मक तनाव से बचने या उसे सीमित करने की योजना बनाएं, प्रत्येक दिन में कुछ समय आराम करें, प्रत्येक दिन एक ही समय पर सोए व उठे और कैफीन, शराब, निकोटिन न लेने का प्रयास करें। अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें। बहुत अधिक गतिविधियों के कारक आपको थकान हो सकती है। थकान का निदान करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है। इसका निदान करने से पहले आपके डॉक्टर कई अन्य बीमारियों का परीक्षण करेंगे, जैसे नींद के परीक्षण ये निर्धारित कर सकते हैं कि बाकी विकारों जैसे स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी महसूस होना या अनिद्रा के कारण अपनी नींद में समस्या तो नहीं आ रही है। थकान कई चिकित्सा स्थितियों में एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि एनीमिया, मधुमेह और हाइपोथायरॉयडिज्म। थकान कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। एक सलाहकार यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या इनसे किसी एक समस्या से आपको थकान हो रही है, जैसे थकावट के अन्य कारणों को हटकर

परीक्षण करने के लिए टेस्ट, थायराइड, एड्रेनल ग्रंथि और लिवर के टेस्ट का उपयोग उन विकारों को हटाने के लिए किया जा सकता है जो थकान का कारण हो सकते हैं। थकान से ग्रस्त लोगों में इन परीक्षणों को परिणाम सामान्य होना चाहिए। थकान से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे तर्कयुक्त परीक्षण है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो सूजन की अनुपस्थिति को दिखाता है। यदि ESR उच्च या सामान्य श्रेणी से ज्यादा है तो एक अन्य निदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर रक्त परीक्षणों में कोई अन्य असामान्यताएं आती है तो आपके डॉक्टर दूसरी परिस्थितियों के लिए परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको पहले कोई संक्रमण हुआ था या नहीं ये देखने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा परिश्रम से बचे। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो ज्यादा परिश्रम करने से थकान से ग्रस्त लोगों को फिर से अस्वस्थ महसूस हो सकता है। तनाव को कम करें। तनाव में रहने से ऊर्जा में कमी आ सकती है और थकान हो सकती है। मोटापा के कारण भी थकान हो सकता है, इसीलिए इसे संतुलन में रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। वेल डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट फटीग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अस एंड हाउ टू अवॉइड इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे विद योर आरजे चेतन। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक। दिल से दिल तक रे शो चली छी डायल इन लाइव चैट चैट। आ आजरो विषय रही छी जे आज दिन रे अपन कोन भलो काम करी छंती। तेबे हम सब प्रथम कॉलर जोड़ी छंती, देखिबा के कॉल करी छंती, कोठु कॉल करी छंती। हेलो
1: हेलो अपा, गुड इवनिंग, नमस्कार।
0: वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। के कहो छंती, कोठु कहो छंती?
1: आवाज कोची प्रतिष्ठित प्रांत
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत आपन धन्यवाद।
0: तबे कौन कहिबे आजिर टॉपिक विषय रे?
1: आज हमे हमर स्टाफ जते एकत्रित हेगे एक ग्रुप हेकि हमे प्रथम करलु हमर सुकिंदा स्टैंड देखे हमर चलचित्र खोलाई छि। ठीक हमे दही पानी ए दही संगे लेंबू आ भूसंग

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही बन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा।

रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछन्ते सुभाष चंद्र शतपथी। मुख्य संवाद, पश्चिमबंगे 15 बुथ्रे अनुष्ठित पुनः भोट ग्रहण, अपराह 5 सुधा 87% मतदान। पश्चिमबंग, केरलम, तमिलनाडु, आसाम एवं पुडुचेरी विधानसभा आसन पर आसंता सोमवार भोट गणना प्रस्तुति शेष पर्यायर। रेल भित्तिभूमिर विकास लागि भारतीय रेलवे पक्षरु 895 कोटी टंका अनुमोदित। प्रसार भारतीर नूतन अध्यक्ष हेले प्रसून जोशी। छत्तीसगढ़ आईईडी विस्फोरण में 4 सुरक्षा कर्मचारी मृत एवं आईसीसी महिला टी20 विश्वकप 2026 निमन्ते 15 जणिया दल घोषणा कला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पश्चिमबंग दक्षिण 24 प्रगणा जिलार 15 बुथ्रे पुनः मतदान प्रक्रिया शेष होइछि। एथिरे माग्राहाट पश्चिमर 11 बुथ एवं डायमंड हार्बर निर्वाचन मंडली 4 बुथ अंतर्भुक्त। अपराह 5 सुधा सेठारे 87% मतदान होइथिबा सूचना मिलिछि। सेठाकार रिटर्निंग अधिकारी एवं पर्यवेक्षकक ठारु मिलिथिबा रिपोर्ट आधार रे निर्वाचन आयोग पक्षरु पुनः मतदान पई निर्देश दिया जाइथिला। गतमास 29 तारिखरे सेही सब बूथ मानकरे द्वितीय पर्यायर भोट ग्रहण अनुष्ठित होइथिला। आसंता सोमवार पश्चिमबंग, केरलम, तमिलनाडु, आसाम एवं केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी अनुष्ठित विधानसभा भोट गणना हेब। आसामर 126 आसन, केरलमर 140 एवं पुडुचेरी 30 आसन पर एप्रिल 9 तारीख में मतदान अनुष्ठित होता। गतमास 23 तारीख में तमिलनाडुर समस्त 234 विधानसभा आसन एवं पश्चिमबंगर प्रथम पर्याय 152 विधानसभा आसन पर भोट ग्रहण होता। गतमास 29 तारीख में पश्चिमबंगर 142 निर्वाचन मंडली द्वितीय पर्यायर मतदान होता। निर्वाचन आयोग पक्षरु पश्चिमबंगे अतिरिक्त गणनाकारी पर्यवेक्षक एवं पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्ति करा जायछि। गणनाकारी पर्यवेक्षक सहायता करिबा लागि समुदाय 165 अतिरिक्त गणनाकारी पर्यवेक्षक नियुक्ति दिया जायथिबा बेले गणना केन्द्रगुडिकरे आईन श्रृंखला व्यवस्थाकु बजाय रखिबा एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करिबा लागि 77 पुलिस पर्यवेक्षक मुतयन करा जायछि। गणना प्रक्रियाकु सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ करिबा लागि निर्वाचन आयोग पक्षरु एपरि पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। भोट गणना समय गणना गृहगुडिकु पुलिस पर्यवेक्षक प्रवेश उपरे कटकणा लागू करा जायछि। गणना केन्द्रगुडिकरे प्रवेश निमन्ते क्यूआर कोड भित्तिक फोटो परिचय पत्र नेबा पई कुहा जायछि। तमिलनाडुरे भोट गणना पई समस्त प्रस्तुति जोरसोर चलीछि। राज्य में 128 साधारण निर्वाचन मंडली, 44 संरक्षित निर्वाचन मंडली।

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक दिल से दिल तक। रेनबो गणा को वंस अगेन वेलकम करुची ज्योति आपणको आउ समस्तंको जणोची आम समस्तंको तरफरु गुड इवनिंग। हाँ, ए गीतरे गीतरे आरंभ हो जाइछि कार्यक्रम संध्या आसर। संध्या आसर रे आपण जानी परिवे निज प्रियजन मानंकु किछि गुड विशेष जदि कार विवाह वार्षिकी रहिछि बा जन्मदिन रहिछि सेमानक पई गुड विशेष पठाई परिवे बाकी जदि मनर कथा बा किछि गुड विशेष कांको कहा पाखकु पठेबे पई चाहौछन्ती ताबी हमकु एसएमएस करि परिवे एवं व्हाट्सएप नंबर मध्य रहिछि तबे नंबर टी होछि 09495963210 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8895254200 एवं जितेबेले एसएमएस लिखुचंती निजरो नाव ठिकाना जहांको पाखको एसएमएस लिखुचंती तांकर नाव ठिकाना निहाती भाबरे लेखंतु तेबे आमरो जेउ श्रोता माने बहुत बेसी आम सहित जड़ित आउ सब कार्यक्रम विषय रे पुंखानुपुंख भाबरे ज्ञान रखिछंती सेमानक भितरु केते जण आम पाखको ऑलरेडी एसएमएस करि सारिछंती प्रथम एसएमएस करिछंती राजेन्द्र नना नुआगारु प्रत्येक थर भली एथरक मध्य आशीर्वाद शुभकामना सबुबेले आम मान प्रति रही से लिखिछंती ओम नम शिवाय दीदी प्रभु सदाशिव आपणको आशीर्वाद करंतु नवग्रह करुणा शुभ दृष्टि आपणक उपरे रखंतु सबु प्रकार सुख सुविधा मिलु एवं समस्तंक पाखरे भल मणिषटिए होई परिचित हुवंतु बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर सुंदर एसएमएस पई आपणकर सुंदर प्रार्थना पई। आपण मध्य एसएमएस करिपरिबे आहुरी मध्य किछि एसएमएस आम पाखरे रहिछि एसएमएस गुड़िक पहुंच आम पाखरे आपणक पाखरे बस किछि म्यूजिकल ब्रेक परे स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय।

पसंद हो जाए चीज तो कीमत नहीं देखी जाती। एसएमएस करिछंती आभा सेन, राजकुमार भरद्वाज, टाटा स्टील प्लांट रू अनुपा, स्मृति अपा, सुदीप अपा, नारायण भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आम स्टाफ मैंने विमल श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, रोहित सेन, दीपक कुमार, अशोक कुमार, अलीशा अपा, तमन्ना रेड्डी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज प्लांट रे मेघ हो जाइछि अपा रहिली नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर एते सुंदर एसएमएस पई आउ सेपटर पाणीपाग विषय रे भी सूचना देइछंती तबे बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर मेसेज पई एवं रुचिका राय को वन्स अगेन हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट एसएमएसटी करिछंती स्वर्णलता राउत संतपुर केन्द्रापड़ा लिखिछंती मैम गुड इवनिंग एंड जय जगन्नाथ आपनों को मध्य वेरी गुड इवनिंग जय श्री जगन्नाथ एवं लिखिछंती प्रभुंक कृपारु बहुत भलरे थांतु आपनको मध्य बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना आमे मध्य ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना करूछु जे आपनों मध्य सबु बेळे भलरे रुहंतु।

तलाश कर मेरी कमी को, तलाश कर मेरी कमी को, अपने दिल में एक बार दर्द हो तो समझ लेना, दर्द हो दिल में तो समझ लेना, मोहब्बत अभी बाकी है। हाँ, तुम कथा मने पड़े, तुम सह बीते प्रति मुहूर्त मन पड़े, तुम प्रत्येक कथा आज भी मु मन रखी, तुम कौन सी कथा ए मनरु लिभिबा सहज नुहे। तुमठारु जित्ती दूर रे रहिले भी तुम्हें केवल आउ केवल मोरा।

एक सुकून सा है तेरी बातों में, जब भी बात होती है दिल खुश हो जाता है। मु जहा करे जेमिति भी थाए जदि तमर कथा मो पाखरे आसी पहुंची जाए मो दिल एकदम गार्डन गार्डन ही जाए। हाँ, आम समस्त जीवन में एमती केही ना केही जणे थांती जहांकर कथा को आमे सबु बेले अपेक्षा करिथाओ। आउ तांकरी मुहरु दुई पद कथा सुनी देले आउ जदी सेई कथा हस हस भरा कथा हेते मीठा कथा हेते ताहले तो पूरा दिन तमाम जहां अमर परिश्रम जहां दुख कष्ट जहां जंत्रणा अछि सब गोटे चुटकी रे कोडे गायब ही जाए। हाँ, तम कथा ही मोर बंचिवार गोटी नुआ बाटो।

दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है निगाहें वहीं जहां नाम तेरा लिखा होता है।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସି ଦିଲ୍ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75

0: 71,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लाइन के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट

0: संवाद क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है, और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाए, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
0: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं, इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया, ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक

नेक्स्ट एसएमएसटी करिछंती मानसी अरोरा गांधी चौक न्यू दिल्ली रो एवं लिखिछंती सभी आरजे भैया दीदी की प्रेजेंटेशन नाइस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और लिखे हैं रेनबो कटक जो सुन रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच आपके अप्रिशिएशन के लिए। अभी पहुंच रहा है आपका फरमाइश का गाना आपके पास।

रेनबो एसएमएस रे एथर एसएमएस करिछंती असलाम शेख जाजपुर रु एवं तांक पर पर एसएमएस करिछंती शिवानी टिकी मिकी माणियाबंधा संतरावाली वडंबारू साथी पहुंचुची आपनको फरमाइश रो गीत बैक टू बैक।

0: ओमकार राव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: म्यूजिकली और 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक न्यूज इन हिंदी रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: खत्म बाय जी।

0: हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु आपनकर साथी जैस्मिन स्वागत करूची आपनकर आमर आम समस्तंकर प्रिय प्रोग्राम को जहर नाहला मो पसंद ओनली ऑन एआईआर एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे।
1: शुभ सकाळर शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे।
0: माखिछ केबे से इंद्रधनुर रंग को न देखिछ केबे से आकाशर लोक अतीतर इतिहास ठारु पाद फेराई आणुथिबा मणिष को केबे पचारिछ बितेई देथिबा से अभुला दिनर मूल्य को ना केबे मापिबा को चेष्टा करिछ रातिरे फुटी दिनरे मळी जाउथिबा से फाळीर प्रेम को

0: साथी ताहले एबे चलंतु कथा हेबा
1: आउ सुनिबा
0: आपनको पसंदर गीत हले मो पसंद के कहउचंती
2: सरिता साहू मुंडिया साही कंटिलो नया करजो
0: कंटिलो नीलमाधव
2: आज्ञा आज्ञा आमर तो गाँव पाखे जो मुंडिया साही गाँव पाखे ही आम नीलमाधव मंदिर
0: अच्छा नीलमाधव पाखर फोन करज्ञा
2: आज्ञा
0: केमी अच्छा
2: हाँ तो भल ही अच्छी बापा बहुत दिन फोन शुणुची कार्यक्रम शुणुची फोन लगुनि पांच वर्ष शुणुची पांच वर्ष पर लगे मैंने शुणुची फोन जो लगुना लगे
0: प्रभु नीलमाधव कृपा है न तो
2: नीलमाधव ठाकुर कृपा है मो फोन टे लगेगा
0: नीलमाधव को देखा करने को जानती
2: हाँ नीलमाधव मंदिर को सब बड़े जाए संक्रांति जाए आम बड़ मंदिर टा बहुत बड़ मंदिर मान बहुत गुडा पार्क भी अच्छी तो गोड़ काटव कितु जहाँ बेले मंदिर ठाकुर मंदिर अच्छी संक्रांति जीवा कथा ना लोक मैंने तो अच्छा सब बड़े भी जाऊँगी आम एटी समस्त पिकनिक भी करने को आसते नीलमाधव मंदिर को मझे मझे जो संक्रांति जाए मु बुल बाड़ी की आसे डंगा बोट रे बहुत भल लगे आनंद लगे
0: बोट रे बस
2: बोट रे मत बस भारी भल लगे डंगा जमी साइकिल बेसिन चलाई दबा आम साइकिल मैंने घेरा बुले आने
0: साइकिन पड़ा ना
2: डर बस
0: अच्छा प्रभु नीलमाधव कौन भोग लगे कहले
2: भक्त जो भोग आनी था सब भोग लगे
0: कौन भोग करने को
2: नड़िया जिते बड़े फलमूल से भोग निने भक्त मान आणते नना मान से ही भोग चढ़ाती दूर बाट रू आसे भी से भोग ने तम पाख बाट रू गले भी से भोग से कर ठाकुर
0: आपण शुणी बहुत भल लगे आते लगुच नीलमाधव आम को भी कृपा कर आमे भी जाई पहुंची जाऊ से ठाकुर दर्शन मिल
2: जाए बुले बुले ठाकुर दर्शन करेंगे आपन को भी बहुत आनंद लगे जेहेतु गोटे नुआ जगह को आसलु बुले बुले गलु जहा जगन्नाथ एमती कृपा करतु आ समस्त कलजुगर जगन्नाथ समस्त को भले रखत
0: जगन्नाथ समस्त को भल रखु सरिता साहू भौणी को बेसी भल रखु
2: आज्ञा मत तो भल रखी सब बेले ही भल फिट भी अच्छे
0: बहुत भल कथा से ठाकुर को धन्यवाद
2: ठाकुर उश करी ठाकुर को एति डाकबे मोर नमिता अपा जस्मिन अपा को भल सबुले रखी था आबुले मो पसंद नुआ नुआ कविता भेट दिं श्रोता मान मन समस्त को खुशी सहित कथबार्ता हूँ श्रोता मान भी रिक्वेस्ट कर समस्त कथबार्ता हूँ नमिता और जस्मिन अपा सांग
0: बढ़िया धन्यवाद
2: भगवान तो मो पाखे बेस भल पाइबा बेस भरोसा अच्छी शिव ठाकुर हूँ मोर बापा पार्वती हूँ मोर माता जेहेतु मोर निज बापा माँ ठारू बेसी माने आपा माँ के छुआ मान को दुख रखते समस्त को सी भले रखते
0: अच्छा आपण को बापा माँ कथा आरंभ कले जिते जानवा को चाहबु आप घरे सब आपण व्यतीत किए किए अच्छा
2: घरे बापा अच्छा मामा अच्छा मोर गोटे बड़ भौणी हूँ सान भौणी बड़ भौणी म्यारेज कर सारे सान भौणी मो पाई बहुत गुडा कष्ट
0: पाऊँगी
2: म्यारेज कर टाइम ना इच्छा ना दि बर्ष पर
0: इच्छा ना टाइम ना बयस तुमको
2: बयस निहते जान कौ बस जन्म है मो पु कहला
0: ट्वेंटी थ्री
2: कि ट्वेंटी फोर हाँ कि जानी मतलब कहूला थे कौ मस

म्युजिकली योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक को स्वागत करुची मु आपण मानन को आपण को कोयल वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे समय सकाळ 9टा हे सलाणी आउ ए टाइम होची किछि मीठा मीठा कथा वार्ता चिट चैट रो टाइम डायल इन लाइव प्रोग्राम आरंभ करबा वर्तमान जोठी आपण माने मते कॉल करी निजर मतामत शेयर करि परबे श्रोता बंधु जेतबेले खाइबा कथा असे ना हम समस्तंकर निज निजर किछि पसंद थाए आ निज निज चॉइस अनुसारे खाइबा को हमको बहुत भल लागे जेतबेले आमे हम पसंदर खाद्यटी देखु ना खाद्यटी पाई जाय थाउ खाइबा पई सेतबेले हमको बहुत शांति मिले आ खूब एन्जॉय करिके आमे ताको खाओ खाइबा कथा एथि पई कहू जी काहे कि ना आज गोटे दिन रे आमे टिके खाइबा पीबा कथा कथा हे जीवा खाइबा भितरे जदि आमे कहबा विभिन्न प्रकार खाद्य तो अच्छे किंतु आम भितरे एमती बहुत जन अच्छा जो मानकर खाद्य को लेकिन किसी अजब अभ्यास सब रही जमती कि किसी लोक कौन करती बिस्कुट सहित पानी माने पानी रे बिस्कुट बुड़े की खाइबा पाई के भल पाती मीठा सहित राग मिक्स करके खाया पाई भल पाती आउ किसी जन अच्छा जो माने आइसक्रीम सहित गुलाब जामुन मिक्स करके खाइबा को पसंद करती कही कही आइसक्रीम सहित जलेबी खाइबा को पसंद करती एमती विभिन्न प्रकार माने अजब सब अभ्यास रही आम मान आईटा आम पाई बहुत यम्मीएस्ट खाद्य होता है माने से खाद्य को खाइबा परे हमको बहुत रिलैक्स फील हुए आउ खुशी भी मिली था आनंद मिली था तो सेमिति कौन अभ्यास अच्छी आपणकर को खाद्य सहित कौन मिक्स करके खाइबा को आपण को पसंद लगे जल्दी जल्दी मते कॉल करंतु आ मो सहित शेयर करंतु कॉल करबा पई नंबर टी हेउची 0671230315 फटाफट कॉल करंतु ता भीतर मुचाटा पट सुनै दै जिगड़ बढ़िया गीत आपण मानको

0: मच आपण कॉल केले शेअर केले. राहिली नमस्कार.
1: नमस्कार राहिली.
0: श्रोता बंधु आपण माने कॉल करंतु आ शेयर करंतु खाद्य रो कोण अजब अभ्यास सब आपण कर रही छी. आगोटे कॉल आछी कॉल टी नै जइबे बे. हेलो हेलो
2: हेलो
0: मो कथा सुनाय छी के कहउ छंती.
2: मैडम नमस्कार.
0: नमस्कार
2: कोइ मैडम
0: माते सुनै जाउनी आपण का कथा.
2: राजेन्द्र नना कहते कटक
0: पूजा
2: पाठ कम शुणी बाहर बसिक कल करदे कल गोटे बढ़िया मेसेज देदेली कल करदे आपड़े सुंदर उपस्थापिका मुझे भावे सुंदर जुगलग्न आप जन्म ग्रहण करते सुंदर चिंताधारा चिंता लोक मत भारी खुशी लगे.
0: मत बहुत खुशी लगे मैंने सकाल सकाल पूरा बोनस बोनस कथा बार्ता आप करदे मोपाई एत प्रशंसा शुणिले सका सका क्या भल न लगे कहले एत खरारे भी मानते मुंड थंडा रही
2: बताले मो जीवन बहुत साधु सन्त मान खाद्य खाई झीटा मतलब भल लगे आपरि मुझे पूजा पाठ कैसे मोर सब जाए साधु सन्त मान खाद्य बहुत भल लगे खाए
0: कई खाई पारिनी मु भी खाई मैंने स्पेशली मंदिर मान जो रोसे हुए से तार टेस्ट तो सब अलग थाए सब बेले ना भी केबे केबे तो खाइबा को बहुत ही भल लगे मत भी भल लगे कई खाई पारिनी भावुचंद
2: खाद्य मसला बढ़ो पिया
0: पूरा साधा साधा तार बासना तार स्वाद सब अलग जा कल कले सुंदर सुंदर कथा कहले खास कर बहुत भल लगे
2: प्रोग्राम कर श्रोता मान मन पूरा मानसिक मान दुश्चिंता
0: कहले
2: मानसिक दुश्चिंता
0: आशीर्वाद छाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद
2: गोटे अच्छी कटक गोटे बम्बे गोटे दिल्ली आज इंडिया भारत बर्ष न थोड़ा जगह अच्छा ज्ञान अच्छा मन कर
0: बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ हाँ निश्चय निश्चय बहुत धन्यवाद आपको रही नमस्कार.
2: नमस्कार.

ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ସକାଳ 10:00 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋୟାର ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସହିତ। रेनबो एसएमएस कार्यक्रम आरंभ हो जाए मनपसंद गीत शुणा मो पाक मेसेज कर मोबाइल मेसेज बॉक्स को जाए टाइप करूँ कैपिटल लेटर रे एफएमआरसी स्पेस दे लिखु फिल्म बा एल्बम ना स्पेस दे लिखु गीतर ना स्पेस दे निज ना और ठिकना लिखि पठे दिं आम नंबर 09495963210 को।

श्रोता बंधु रेनबो एसएमएस कार्यक्रम चलती ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कोयलपा नमस्कार सब स्टाफ मानको नमस्कार सब श्रोता मानको गुड मॉर्निंग मुसनिया पाई चाहू छी सबिता सबिता ओडिया गीत ठी लिखी छंती मैसेज टी को उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रो हैव अ नाइस डे रहिलु नमस्कार गीत रिप्ले कदु छी एंजॉय करंतु

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: শ্রোতা বন্ধু টিউন করছেন আপনার 100.4 আকাশবাণী FM রেইনবো কডেক দিল সি দিল তাক কলাকার।

श्रोता बन्धु आज आमे कलाकार कार्यक्रम कथा होतेले बॉलीवुड र गीतिकार लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी जी को विषय रे तांकर किछि रचना रो सुंदर सुंदर गीत आपण मानको सुनैले तबे कोयल आज पाई एठी ही आपण मानक ठारु विदाय नबो अमर परवर्ती कार्यक्रम सुनि परिबे आपण माने आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो एफएम रेनबो दिल्ली केन्द्र रो

1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का बहुत ही खूबसूरत गाना टाइटल ट्रैक और अब इसी फिल्म का सीक्वल बनकर आ रहा है, जिससे जी हाँ सुभाष घई भी जुड़े हुए हैं और संजय दत्त भी जुड़े हुए हैं। सुभाष घई इस फिल्म में एक्टिंग करते नजर आएंगे और इसके लीड एक्टर होंगे संजय दत्त। और आज का जो हम सवाल लेकर आए हैं बॉलीवुड सरताज के लिए, तो बॉलीवुड क्विज जो हम लेकर आए हैं उसका क्वेश्चन है कि सुभाष घई और संजय दत्त की 1993 की फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, आपको इस फिल्म का जो सीक्वल है उसका नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। सुभाष घई और संजय दत्त की 1993 की फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, आपको इस फिल्म का जो सीक्वल है उसका नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर

0: अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

आकाशवाणी रेनबो का हिट प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ फिल्म जगत की बातों का साथ। बॉलीवुड के मेकर स्टार सलमान खान की बात की जाए तो वो अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं मुंबई में। जी हां, सलमान खान के साथ इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी। हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म का टाइटल यानी फिल्म का नाम अभी रिलीज नहीं किया गया है, अनाउंस नहीं किया गया है और अब खबरें ये आ रही हैं कि बहुत ही जल्द मेकर्स इस फिल्म का टाइटल रिवील करने वाले हैं और सलमान खान और नयनतारा की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के लिए खास तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कहें तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां जनाब, सलमान खान और नयनतारा की फिल्म को अगर देखा जाए तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वामशी पेडिपल्ली और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू। सलमान खान और नयनतारा की जोड़ी को फैंस पहले ही बहुत ज्यादा पसंद कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बज है इस फिल्म का, लेकिन टाइटल ही रिवील नहीं हुआ है तो सबको ऐसा लग रहा है कि बात की जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि फिल्म मेकर्स को, सिने लवर्स को और हमें भी पता है कि एक फिल्म का टाइटल कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम उस फिल्म की बातें कर रहे होते हैं। और अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेगा स्टार सलमान खान और नयनतारा की फिल्म का टाइटल जल्दी ही रिलीज हो जाए।

0: जी हाँ, एक आप हैं और एक हम हैं और एक है हमारा बॉलीवुड सरताज। जी हाँ, हमसे जुड़ चुके हैं वो शख्स जो आज की बनी है बॉलीवुड सरताज। आइए आप उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: जी सर, आप बॉलीवुड सरताज बने हैं, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: तो आज जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष घई साहब और संजय दत्त की 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, उसका आंसर बता दीजिए।
1: संजय दत्त है।
0: उसकी सुभाष। फिल्म का नाम जो आपने लिख के भेजा है।
1: खलनायक टू।
0: राइट जी। आप फिल्म देखते हैं?
1: बिल्कुल मैम।
0: किस तरीके की फिल्में पसंद हैं आपको?
1: रोमांटिक मूवीज ज्यादा देखता हूँ मैं, और एक्शन मूवीज, और एक सोशल मीडिया में जो अच्छी मैसेज देते हो उस तरह की मूवीज देखना पसंद करता हूँ, जो सोसाइटी को अच्छी राह पर ले जाए,
0: सीख देती हो।
1: यस
0: जी जी, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बातों से मिलते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल कॉज पे जो फिल्म्स बनती हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब उसमें एक्शन नहीं होता, बहुत ज्यादा गाने नहीं होते, तो उनको कम पसंद करते हैं। बट जैसे आप बता रहे हैं कि आपको वो पसंद है, तो वाकई आप बहुत अच्छी फिल्में देखना पसंद करते होंगे।
1: बिल्कुल मैम, बिकॉज हमारी जनरेशन को अच्छी फिल्में देखने को मिले, तो वो उनका आगे फ्यूचर में उनको एक सबक और लेसन भी मिले, और आगे के लिए वो अवेयर रहे कि किस तरह से सोसाइटी में हमें आगे अपने आप को ठीक रखना है, और आगे उसको आगे ले जाना है, अपनी कंट्रीज को, अपनी आपको, मतलब इस तरह से हमें देखना चाहिए कि मूवीज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो एक जो दर्शक होते हैं, जो उनमें हर उम्र तबके के लोग होते हैं
0: जी।
1: तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है मूवी। कोई भी एक मूवी बनने के बाद एक सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के अंदर जब वो आती है तो सबसे पहले उन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरफ तबके के लोग उन्हें देखते हैं, उनका ट्रेलर्स देखते हैं, ट्रेलर्स देखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से वो चीजें वो फॉलोअप करते हैं, वो ड्रेसिंग सेंस करते हैं, वही चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर फिल्में अच्छी होनी एक सोसाइटी को एक बूस्टअप करती है।
0: जी जी, राजेंद्र जी आप पहले लिसनर हैं जो इतना डीपली जा रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से फिल्मों को देख रहे हैं। वाकई हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है फिल्मों का, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा जो हमारे दर्शक हैं आप जैसे हो और आप की तरह सोच रखते हो। आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप बने हैं आज की बॉलीवुड सरताज।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ जनाब, और अब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनमें बिल्कुल सही जवाब आया है, और उन सभी लिसनर्स के नाम ले लिए जाएं जिन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है प्रवीण चौहान, खरगोन मध्य प्रदेश से, राजेंद्र कुमार दिल्ली से, वो हमारे आज के बॉलीवुड सरताज बने, और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर। इसी के साथ राजेश कुमार दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सृष्टि कुमारी पटना बिहार से बिल्कुल सही जवाब। सृष्टि, हमने आपको भी कॉल लगाने की कोशिश की थी लेकिन कॉल लगा नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का बात होगी, आप भी बनेंगे किसी ना किसी दिन बॉलीवुड सरताज। यूं ही प्रोग्राम्स को सुनते रहिए, एफएम रेनबो के प्रोग्राम्स को आप यूं ही हमेशा सुनते रहिए। नौशाद चौधरी दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसी के साथ जयराम खोरवाल दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।

ईशा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद फुरकान कान से सही जवाब, दानिश खतौली से, दिनेश गायकवाड़ यवतमाल महाराष्ट्र से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद फुरकान सियाल गांव मेरठ से सही जवाब दे रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, विजय कुमार कामन दिल्ली से, सलीम मलिक मेरठ से, उमेश कुमार ख्याला से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।

0: पाणी आकाश पाणी
1: अंतालंक ठारु बंडा एवं कोयंक जाय सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना हम कदम। और कहां पर सुन रहे हैं आप इसे?

2.6 पर तो सुन ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और अगर आप OTT के दीवाने हैं तो आपको OTT का तड़का मिलेगा कहाँ पर? वेव्स प्लेटफॉर्म है हमारा, उस पर। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पर। आज हम बात कर रहे हैं कि मस्ट हैव क्वालिटीज इन लाइफ पार्टनर, या हम कदम जिन्हें आप कहते हैं वो क्या होनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, या इसमें हमें कहां बाउंड्री सेट करनी है, या हमें ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूं, मुझे बख्श दीजिए, ठीक है? तो पेशेंस, टॉलरेंस या ये इस तरह की चीजें उनमें होनी चाहिए। पेशेंस तो बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मैच होती है ना, जहां पर वहां कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। और एक सारी बातें एक साथ मिल जाएं जरूरी नहीं, लेकिन आप उस उतार चढ़ाव को किस तरह से मेंटेन करते हैं ये मैटर करता है। तो ऐसे में ना आप सिर्फ बातों पर ध्यान मत दीजिए, वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, आप एक्शंस पर ध्यान दीजिए। देखें कि वो जो कहते हैं या कहती हैं उसे पूरा करती हैं या नहीं करती हैं, या फिर सिर्फ बहुत लंबे समय से कहती ही जा रही हैं और बदलाव कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो ध्यान देने वाली बात है। पेशेंस से मुझे याद आया कि एक पेशेंट पहुंचा डॉक्टर साहब के पास और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर बोले कि अरे भाई, जोड़े तो भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? बताइए, अब ऐसी जगह पे पेशेंस काम आता है कि नहीं है? क्या अगर पेशेंस ना रखें आप, तो फिर तो वही होना है कि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो उस जगह ना डॉक्टर को खुद मरीज बनने में टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रही हूं आपको। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर पटाखे फूटते हैं। तो पटाखे नहीं फोड़ने हैं तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। और आप अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, ना सिर्फ दूसरे के बल्कि अपने भी, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मैच करने चाहिए आपके एक्शंस आपके वर्ड्स के साथ में, ठीक है? अब एक गाना सुनेंगे, उसके बाद आएंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। और अब आएगी बात रेड फ्लैग्स की, कि क्या क्या वो खतरे के लाल निशान है, खतरे के निशान है जिन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रख के ना आप खुद को भी बचा सकते हैं और लोगों को भी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: मेघा जी एक बार फिर स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यू आर विथ मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना कपल बेस्ड शो हम कदम। हम बात कर रहे हैं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हम सफर या हम कदम में जो आपको आगे बढ़ने में आपको प्रेरित करे और आपका साथ दे, और क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनके हमने अभी तक बात नहीं करी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं बात उसके बारे में, देर किस बात की। तो सबसे पहला तो ये है कि कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि हर बार आपको कुछ गलत करते रहें और फिर बार बार मैनिपुलेट करते रहें और उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। और साथ में ये भी कहें कि आई एम ऑन माई वे टू बिकम अ रेड फ्लैग एज बींग ग्रीन वन डिड नथिंग फॉर मी। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सच बता रही हूं मैं। गलत करना और फिर उसको सही ठहराना, ये किस तरह से सही है भाई? आप कुछ भी बनने की कोशिश कर रहे हो, उससे हमें क्या, उससे नुकसान हो रहा है हमारा, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी बात, लैक ऑफ ट्रस्ट या ऑनेस्टी। थोड़ा बहुत कभी कभार जांच पड़ताल करना ठीक है, लेकिन बार बार ये कि दिखाओ जरा अपना फोन, या फिर आपसे कहें कि प्रूफ मांगते रहें हर समय या मांगती रहें, तो ये भी गलत है। ये आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी है बहुत बुरी तरह से और ये गलत है। अगर किसी को आप पर भरोसा नहीं है, तो अगर एक बार नहीं है तो बार बार फिर होगा नहीं। आप एक बार उनको ट्रस्ट फील करवाने के लिए आप उनको प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन फिर ये आदत ना बन जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप सही हैं तो आपको बार बार प्रूफ देने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर कोई आप पर ट्रस्ट करता है, आपको अच्छे से जानता है, तो आपसे प्रूफ मांगेगा भी नहीं। दूसरी बात कि और जो इमोशनल अब्यूज या किसी भी टाइप का अदर अब्यूज जो करते हैं, वो तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। तो इससे बिल्कुल बच के रहें और इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, किसी भी तरह से अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे तभी वो रिलेशन आगे बढ़ पाएगा, और अगर आप अपनी हेल्थ से ही जाएंगे तो फिर रिलेशन तो बचेगा ही नहीं ना, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना या अपोलोजाइज ना करना। गलतियां सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, वो बात सही है, लेकिन गलतियां करके उनको सुधारने की कोशिश करना ही एक सही इंसान का काम है, बजाय इसके कि वो गलतियां करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, या वो कहें कि मैं उसकी जैसी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारी मेंटालिटी में कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर महिलाओं की है या पुरुषों की, दोनों के लिए लेते हैं, तो आप ना सामने वाले को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें। आपको क्या लगता है, आप पहले इंसान हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरह के इंसान हैं आप ये कोशिश कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज करने की जब आप कोशिश करते हैं, वो चेंज तभी हो सकता है जब वो इंसान खुद बदलना चाहे। अगर वो खुद ही नहीं बदलना चाहता है, तो आपका कोई भी एफर्ट काम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आखिर में कहना चाहूंगी, वो ये

बेहतर हम सफर हम कदम की पहचान यही है कि आपको साथ रहते हुए उसके कैसा महसूस होता है, आप उसकी कंपनी में अपना एक बेटर वर्जन बन गए हैं, या आप पहले से और ऊंचे उठ गए हैं, या आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, या फिर आप पहले से भी बदतर हो गए हैं। मतलब पहले आप अच्छे हुआ करते थे और आप एकदम आप डम होते जा रहे हैं, या आपने कुछ नया नहीं सीखा है लाइफ में, या आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, यही बात बता देती है कि आपके रिलेशन आपका रिलेशन कैसा है और आपको इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। इतनी सारी ज्ञान की बातों के बाद ना अब विदा लेने का वक्त आ गया, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलेंगे फिर बहुत जल्द। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे थे आशियाना विद मी शालिनी 102.6 पर। चलते चलते ये सॉन्ग आपके लिए प्ले करती हूँ, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आ गई है आपके दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज एक नया दिन और एक नया विषय और एक नया गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में, पर ये गेस्ट कोई आम नहीं है, बहुत खास है। आपका परिचय अभी थोड़ी देर में आपसे कराते हैं, पर एक बात जो आपको कहनी है वो ये है कि स्वास्थ्य ही धन है। ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन आज के दौर में ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक वैश्विक सत्य बन चुकी है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग बेहतर और सुलभ इलाज की तलाश में सीमाओं को पार करते हैं, तब एक नई अवधारणा जन्म लेती है, मेडिकल टूरिज्म। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जहां लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ होने

0: की उम्मीद लेकर निकलते हैं जहां अस्पताल केवल इलाज का केंद्र नहीं बल्कि भरोसे तकनीक और करुणा का संगम बन जाते हैं और भारत अपनी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं अनुभवी डॉक्टरों और किफायती इलाज के कारण इस वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मेल देखने को मिलता है जहाँ एक ओर अत्याधुनिक सर्जरी होती है वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्राचीन पद्धतियां भी लोगों को आकर्षित करती है। आज का ये कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय यानी मेडिकल टूरिज्म पर केंद्रित है। हम जानेंगे कि कैसे क्षेत्र न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था रोजगार और वैश्विक पहचान को भी सशक्त बना रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष अंक का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और अब समय आ गया है परिचय कराने का आपसे आपके एक बेहद लोकप्रिय एक पर्सनालिटी से जो कि स्वास्थ्य के सेक्टर में एक बहुत नामी नाम है नामी गिरामी हस्ती है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है और कुछ कुछ तो लोग पहचान भी गए होंगे क्योंकि हम तारुफ करा रहे हैं आपका हमारे आज की एक्सपर्ट से जो है डॉक्टर उपासना अरोड़ा। आप ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो मैम ने समय निकाला है आज एक घंटे मैम रेडियो डॉक्टर में आपकी गाइड बनेंगी। हम सबको जरूरत है इसको जानने की कि मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा शब्द बनकर उभरा है जो पहले सुनने में नहीं आता था। तो थोड़ा सा मैडम के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। आप जो है मेडिकल टूरिज्म कमिटी की को हेड कर रही हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैम चेयरपर्सन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत में। आप चेयरपर्सन है फिकी मेडिकल टूरिज्म कमिटी में और साथ ही साथ आप चेयरपर्सन है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है मैडम की जिसमें उनके कितनी जगहों से आप जुड़ी हैं और जगह से आप ये कार्य कर रही हैं नोबल कॉज से आप जुड़ी हुई हैं और रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मैडम को बहुत मिल चुके हैं। तो आज एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं वो पूरी युवा पीढ़ी के लिए। तो आज हम मैम का स्वागत करते हैं और बहुत कुछ जानेंगे इस डायरेक्शन में भी क्योंकि एक जो नया क्षेत्र खुल रहा है मेडिकल की दृष्टि से और भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, इसको कैसे डिफाइन करते हैं?
1: जब बाहर के देशों से लोग हिंदुस्तान आते हैं हमारे भारतवर्ष में आते हैं उसको हमने नाम दिया है चिकित्सा के लिए। देखिए ऐसा सालों से होता था कि हम लोग यानी भारतीय जाया करते थे एक समय में अमेरिका या लंदन क्योंकि तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब भारत चिकित्सा के क्षेत्र में इतना अग्रणी है और हमारे डॉक्टर्स इतने ही एक्सपर्ट हैं जो बाकी देशों में भी सुविधाएं देते हैं। तो जब बाहर के दूसरे देशों के लोग आते हैं तो आप ये समझिए कि उस सफर को हमने नाम दिया है मेडिकल टूरिज्म। यानी ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए पहुंच रहे हैं।
0: जी, तो ये मेडिकल टूरिज्म कब से शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते और अभी भी जब कोई डिफिकल्ट सर्जरी की बात होती है क्या मेजर कोई ऐसा क्रॉनिक एलिमेंट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसके लिए तो विदेश जाना पड़ेगा।
1: देखिए होता तो ये बहुत सालों से रहा। कुछ कंट्रीज से लोग आ रहे थे, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी। जैसे एक समय था हमारे देश में अफगानिस्तान से बहुत लोग आया करते थे
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सेक्टर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और कुछ अस्पताल थे जो अपने अस्पताल में बाहर के जाकर पेशेंट लेकर आते थे और ये सुविधाएं देते थे। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन उभर के सामने आया और उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को हमें बहुत ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है क्योंकि जब कोई विदेशी भारत में आके चिकित्सा सुविधा लेता है और अगर वो किसी गलत हाथों में चला जाता है, किसी गलत अस्पताल पहुंच जाता है या उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का या एक जगह का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का अपमान है। तो उनके दिमाग में ये एक बहुत ही अच्छा विचार था कि हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बिल्कुल रोडमैप बनाकर दी जिसमें ये काम कई सालों से चल रहा था। लेकिन अभी जब हमारा बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन जी ने तो उन्होंने उन्होंने कहा हिंदुस्तान में 5 मेडिकल हब बनाए जाने चाहिए।
0: ओके।
1: उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक

0: वेबिनार रखी जिसमें सौभाग्यशाली हूं कि मैं भी थी। उसमें उन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे आपको मेडिकल हब बनाना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, वहां पे चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ वहां पे जो पेशेंट के साथ के लोग हैं उनको रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए, कुछ ऐसा हो जहां पे वो जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो कुछ देख भी सके, भारत दर्शन भी कर सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं डीपीआईटी के साथ हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सभी काउंसिल्स हैं। मैं चूंकि सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में हूं जिसका काम है विदेशी लोगों को भारत में फॉरेन एक्सचेंज को कमाना, तो इस तरह का काम हम करते हैं। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में जो सबसे जरूरी बात है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जुड़ने का कारण क्या था, एनएबीएच के जुड़ने का कारण क्या था कि क्वालिटी केयर मिले। हर अस्पताल उसमें एनरोल नहीं हो सकता जो एनएबीएच एक्रेडिटेड अस्पताल हो, यानी कि वो कुछ मानक को पालन कर रहे हैं वो वहां होंगे, तो जो भी भारत में आने वाला विदेशी नागरिक है उसको क्वालिटी केयर मिलेगी, साथ ही साथ कुछ उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे हमें उस भाषा का ज्ञान रखने वाले इंटरप्रेटर भी देने पड़ते हैं ताकि हम अपने पेशेंट की बात को समझ सकें। साथ ही हम लोगों ने ऐसी सुविधाएं रखी हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट तो अगर लंबा, क्योंकि आपको बताना ये भी जरूरी है भारत में जो पेशेंट बाहर से आता है वो किसी बड़ी सर्जरी के लिए आता है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, या पूरी कोई आर्थोपेडिक में री ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या कैंसर सर्जरी या इस तरह की चीजें
1: जी,
0: तो वो लंबा रुकते हैं, तो उनके साथ जो उनके अटेंडेंट होते हैं उन बेचारों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ अस्पताल में ही बैठे रहें, तो एक तो उनके रहने की सुविधाएं हम लोग रखते हैं, साथ ही साथ उनको आसपास का क्षेत्र भी दिखाते हैं, उनके हिसाब का खाना बनता है, तो ये सारी चीजें, यानी हम लोग ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आप घर से दूर भी हैं तो आपको घर की कमी ना महसूस।
1: जी जी, मतलब वो उनका जो स्टे है वो मेमोरेबल उस सेंस में भी रहे कि वहां जाकर सिर्फ एक सर्जरी ही नहीं है, वो एक अच्छी यादें भी लेकर वापस जाएं, ये अच्छी बात है। और आप लोग भी बहुत कुछ जानना चाह रहे होंगे इस कार्यक्रम के साथ जो जुड़ गए हैं, हमारे श्रोता प्रतिदिन आप जुड़ते हैं तो आप अपने प्रश्न यहां करते हैं, आज भी कर सकते हैं, मैम रहेंगे हमारे साथ और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं 2342 1080, 2342 1082, दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 डायल करके इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर उपासना अरोड़ा से बात कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। हम आपकी जर्नी के बारे में भी अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपकी पसंद का गीत मैंने निकाला है, आइए सुन लेते हैं अपने श्रोताओं के साथ, सुनते रहिए।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में. आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म पर और हमारी आज की एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा और हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. आइए इनसे पहले बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो
0: जी नमस्कार.
1: रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर शाली मैम को शालीनता सही नमस्कार.
0: नमस्कार राजेंद्र जी.
1: और जो टॉपिक एक्सपर्ट मैम है उनको भी नमस्कार और आभार.
2: नमस्ते जी.
0: क्या पूछना है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ. और मैम से मेरी दो गुजारिश है, छोटे छोटे सवाल है. पहला सवाल मेरा ये है कि यूथ टूरिज्म तो जो है मोदी साहब ने नाम दिया है दिव्यांग विकलांगों को, तो मेरा सवाल ये है कि दिव्यांगों के लिए इसमें क्या इसको बनता है. पहला सवाल ये खासतौर से जो आंखों से महरूम है उनके लिए. और दूसरा सवाल वो ये है कि इसमें दिव्यांग लोग क्या अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जरा गाइड करें बड़ी मेहरबानी होगी.
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. मैंने बताया भी कि मैम जो है जुड़ी हुई हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत से भी, तो आप बहुत ऐसे कार्य भी देख रही हैं. इनका ये प्रश्न है.
2: देखिए मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार के जो दिव्यांग जन है, चाहे वो मेंटली चैलेंज हो, चाहे वो आंखों से महरूम है, या जिनको हाथ पैर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन सबके लिए विशेष सुविधाएं अब बना दी हैं. साथ ही साथ उनको बहुत अच्छा, अगर वो किसी खेल में चले जाते हैं तो इनाम राशि बहुत ही अच्छी कर दी है. और जहां तक आपका ये प्रश्न था कि उनके लिए कैसे उनको कार्य पे लगाया जाए, तो आपको जान के खुशी होगी कि ब्लाइंड्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत तरह की जॉब्स होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्लाइंड ही होते हैं, बाकी उनके सारे अंग ठीक काम कर रहे होते हैं. उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी मैं आपको बताती हूँ. मैं एक कार्यक्रम में थी स्पेशल ओलंपिक भारत में. स्पेशल ओलंपिक में मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं. वहां पर जो हमारी चीफ गेस्ट थी वो थी दिल्ली के ही एक क्षेत्र की जिलाधिकारी, जो कि आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस पास किया और आज वो जिलाधिकारी हैं. तो ये एक उदाहरण है जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आंखों से नहीं भी देख सकता है तो वो और किसी भी कला में पारंगत हो सकता है और उनके लिए हर जगह नौकरी उपलब्ध है. मुझे लगता है शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई राजेंद्र जी.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. और बहुत सारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं वो हमारे रेडियो डॉक्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं. और मैं जैसा पहले ओपनिंग में बोल चुकी हूँ कि मैम इज एन इंस्पिरेशन, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे मैम अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी बताएं, किस तरह से आप जो इस मुकाम को आपने आज अचीव किया है वो कितना ईजी रहा या टफ रहा, वो थोड़ा सा बताइए.
2: अगर आप मेरी पूरी जर्नी जानेंगी तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो हम बहुत अच्छे घर में पैदा हुए थे, जिसे आप लोग एक आम भाषा में कहते हैं धनवान घर में मेरा जन्म हुआ था. लेकिन फिर मेरे पिताजी बीमार हो गए तो हमारे घर से वो सारा ऐश्वर्य और वैभव समाप्त हो करता गया. तो आपने आज तक जो भी इंटरव्यू किए होंगे लोगों ने बताया होगा कि हम पहले गरीब थे, फिर हमने कैसे मेहनत करी और हम अमीर

0: हुए, लेकिन मेरी जर्नी में पहले हम अमीर थे फिर हम अच्छा। गरीब हो गए। तो मैंने अपनी माँ का संघर्ष देखा, उसके बाद मैंने अपने मन में ये ठाना कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ समाज में बदलाव लाऊंगी, और इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आईएएस अधिकारी बन सकूं। लेकिन जब तक मैं इम्तिहान देती मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया, और तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं 22 साल की थी। तो जिंदगी बहुत बड़े और एक अनोखे मोड़ पे खड़ी थी उस समय। फिर मैं अपने मामा जी के साथ चली गई थी, और उसके बाद मेरी शादी हुई जो यशोदा अस्पताल में श्री पी एन अरोड़ा जी से। उसके बाद यशोदा मेरी स्वर्गवासी सासू माँ का नाम है, जो कि कैंसर पेशेंट थी।
1: अच्छा।
0: उनकी याद में इस अस्पताल को बनाया गया, क्योंकि जिस समय हमने अस्पताल बनाया था गाजियाबाद में हमारे परिवार ने, उस समय गाजियाबाद में कुछ भी नहीं था, और मेरे पति को अपनी माता जी को लेकर बम्बई जाना पड़ता था कैंसर के लिए।
1: ओके।
0: टाटा ही हुआ करता था
1: टाटा।
0: तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर। तो वो उनकी याद में, और वो जो मेरे पति का अपनी माता जी के साथ, जैसे कहते हैं ना हर क्षण कुछ डिसाइड करता है,
1: बिल्कुल।
0: वो ट्रेन से जा रहे थे, लोकल ट्रेन से पानी भरने के लिए, तब ये बिस्लरी नहीं होती थी, वो नीचे उतरे थर्मस में पानी भरने। ट्रेन चल दी और मम्मी चली गई आगे।
1: अच्छा।
0: तो मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए कि मम्मी खो ना जाए, बीमार भी है
1: जी।
0: लेकिन लकली वो नेक्स्ट स्टेशन पे मिली। लेकिन वो एक क्षण था जब मेरे पति ने डिसाइड किया कि मैं जो भुगत रहा हूँ इस दर्द को, ये गाजियाबाद में और लोग ना भुगते।
1: अच्छा।
0: तो ये सोचकर हमारे परिवार में, हमारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ दोनों डॉक्टर थे, मेरे फादर इन लॉ, इन चारों ने मिलकर अस्पताल बनाया उनकी याद में, यशोदा जी की याद में
1: जी।
0: और माता जी इतनी अच्छी थी कि आप देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवा करी है, और धीरे धीरे बढ़ते गए, 6 अस्पताल बन गए
1: जी।
0: तो अब हमने कैंसर पे फोकस किया इस समय, और एक नया अस्पताल बनाया जिसका नाम है मेडिसिटी, जिसमें सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ है, आपको कहीं किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरा छोटा सा सफर।
1: ये सफर बहुत एक्साइटिंग भी है और बहुत इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि इतने सारे अप डाउन्स के बाद और उस मुकाम पे पहुंच जाना, और जब आपने शुरुआत की होगी तो ये सोचा भी नहीं होगा। आपने बताया घर में डॉक्टर्स थे, उन्होंने शुरुआत की, पर आप कैसे आई वो एक अलग कहानी होगी, और मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड निकल जाएगा और हम शायद उससे सीखते ही रहेंगे आपकी कहानी से, पर धीरे धीरे करके पूछते रहेंगे। मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरे पास झड़ी लग चुकी है मैसेजेस की, और बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम, वेलकम टू डॉक्टर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम, आप यहाँ आज आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद इब्राहिम हमें मैसेज करके लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे मैसेजेस आपको वेलकम करते हुए आए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है परिधि ने दिल्ली से, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, थैंक्स शालिनी जी फॉर सच थॉटफुल क्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑल्सो थैंक्स टू उपासना जी फॉर शेयरिंग ग्रेट इन्फॉर्मेशन। इनका एक क्वेश्चन है मैम, कि फ्यू ट्रीटमेंट कैन समटाइम टेक ईयर्स, जैसा आप बता भी रही थी शुरू में कार्यक्रम के पहले जब हम बातचीत कर रहे थे, कि कभी कभी महीनों के लिए लोग आते हैं, तो डू कंट्रीज ऑफर लॉन्ग टर्म मेडिकल वीजास फॉर सच ट्रीटमेंट?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ये डिपेंड, वीजा डिपेंड ही करता है कि किस प्रकार का आप इलाज कराने भारत में आ रहे हैं। ये हमारे मिशन्स वहां पे जो वीजा दे रहे होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और इनको फिर मल्टीपल एंट्री का वीजा मिलता है। तो जैसे एक बहुत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आता है, मान लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, 2-3 महीने के बाद अगर वो वापस भी जाना चाहता है तो वो जा सके, फिर वापस आ सके, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को फॉलोअप्स की बहुत जरूरत होती है, तो उनको बार बार वीजा के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए मल्टीपल एंट्री वीजा भी हम लोग देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये एक नियम है जो सारी दुनिया को पता है, कि अगर कोई बीमार है और वो आ रहा है तो लंबे समय के लिए ही आएगा, तो इनको लॉन्ग स्टेइंग वीजा ही मिलता है
1: जी। और ये क्या प्रोसीजर, कितना टफ है ई जो मेडिकल वीजा का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना अवेलेबिलिटी है या क्या प्रोसेस है वो?
0: देखिए, एक समय था जब ये सब कुछ बहुत टफ था, अगर सच कहा जाए, एक समय था जब वीजा मिलना ही बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब कहते हैं ना सरकार अगर कुछ करना चाहती है, ठान लेती है तो कर दिखाती है, जब से सरकार ने ये चाहा कि नहीं हमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो पिछले 2-4 सालों में चीजें इतनी बदल गई हैं कि मैं चूंकि शुरू से ही इस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से जुड़ी हुई रही, अलग अलग जगहों से, कभी फिक्की से, कभी सीआईआई से, कभी बीआईएस से, तो बहुत सारी चीजों की वजह से मुझे पता है कि कितना चेंज आया है
1: जी।
0: वीजा बहुत इजी हो गया है, ई वीजा भी मिलता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक प्रयास किया है जो हम लोग मिनिस्ट्रीज में उठाते हैं क्वेश्चन,

0: कि जो सीरियस पेशेंट है उसकी कंडीशन देख के वीजा की अवधि को तय किया जाए. जैसे मान लीजिए अगर कोई सीरियस बहुत ही सीरियस पेशेंट है तो उसका वीजा तुरंत होता है.
1: अच्छा,
0: उसको टाइम नहीं लगाते. या कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कुछ देश हैं जो अभी बैन है, नहीं आ रहे हैं, उनमें भी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें भी उनको वीजा मिलता है, लेकिन केस जेन्युइन होना चाहिए
1: जी. तो उसके थोड़ी सी छानबीन की जाती है.
0: हाँ जी, जी तो जी. मुझे ऐसा लगता है अब चीजें बहुत आसान है
1: जी, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं. और देखिए, ये हमें कुंडली विलेज से नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से मैसेज आया है. हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा, शिफाली और माधव दास इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं. और ये हमें लिखकर भेजा है शालिनी जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कालरा, गुड़गांव में रहता हूँ. डॉक्टर अरोड़ा को मेरा नमस्कार, इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच. रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार दिल्ली से इस कार्यक्रम की तारीफ कर रही हैं और आपका स्वागत कर रही हैं. और ये हमें मैसेज किया है मनोहर जी ने मुंसियारी से. नमस्कार शालिनी जी और उपासना जी, मैं उत्तराखंड के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र मुंसियारी में ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ उस कार्यक्रम को. इस समय यहाँ का तापमान 1 डिग्री है. मेरी जिज्ञासा है, भारत सरकार की हील इन इंडिया पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह अपनी भूमिका निभा रही है हमारी सरकार? और दूसरा प्रश्न है कि मेडिकल टूरिज्म में युवा किस तरह से हेल्थ केयर में अपना योगदान दे सकते हैं, खासतौर पर रोजगार के अवसर और भारत सरकार की अंतिम जन के लिए दी जा रही सुविधा, इसके बारे में बताएं.
0: देखिए, सबसे जो आपका पहला प्रश्न था वो था कि किस तरीके से सरकार
1: हील इन इंडिया
0: में काम कर रही है. तो सरकार के दो नारे हैं, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया. हील बाय इंडिया में हम लोग अपने प्रशिक्षित डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स वगैरह को बाहर भेजते हैं और हील इन इंडिया में हम पेशेंट को बुलाते हैं. तो ये दोनों ही तरीकों में हमें एक तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो अस्पताल इस सुविधा को दे रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस अस्पताल हो, वहां पे स्किल्ड स्टाफ और डॉक्टर्स हो. तो ये सबसे बड़ा जो सरकार काम कर रही है वो यही कर रही है कि वो सही लोगों से पेशेंट्स को मिलवा रही है, पहला. दूसरा, अभी एक और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं.
1: अच्छा,
0: जो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लॉन्च करेगा, जिसमें हम NABH के साथ टाई अप करेंगे ताकि सिर्फ वही अस्पताल उसमें आएंगे जो एक्रेडिटेड अस्पताल हैं. और अब एक नई डिस्कशन हुआ है मिनिस्ट्री में, जिसमें यह कहा गया है कि हमें बहुत हाई एंड सुविधा के लिए एक रेटिंग और देगा NABH अस्पतालों को, जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और डॉक्टर्स की डिग्री से रिलेटेड होगा, ताकि जिसके द्वारा इलाज किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशिक्षित लोग हों. और साथ ही साथ हम लोग आउटकम भी पोस्ट करेंगे उस पोर्टल पे.
1: अच्छा,
0: सो जो आ रहा है वो खुद ही चूज कर ले कि भाई ये डॉक्टर इसकी, हम लोग सारा यहां तक कि उस ट्रीटमेंट को भी डालेंगे कि आपका इलाज इतने रुपयों में हो सकता है, ताकि हर आदमी अपनी पॉकेट के हिसाब से अस्पताल को चुने, आउटकम के हिसाब से डॉक्टर को देखे और इंडिया आए. तो पहला तो मैं सरकार का धन्यवाद करते हुए बताती हूँ, एक तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है. दूसरा प्रश्न मैं इनका,
1: दूसरा ये युवाओं को चाह रहे हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं इस के साथ.
0: देखिए, युवाओं के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि सारा काम अकेले सरकार नहीं कर सकती. तो हमारे लिए जरूरी है कि कुछ लोग आगे बढ़कर आए. जो युवा हैं उन्होंने ऑलरेडी इसमें, बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हैं, जो और देशों में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के अस्पतालों के साथ टाई अप करते हैं, फिर वो भारत लाते हैं उन पेशेंट्स को और यहाँ के अस्पतालों के साथ टाई अप करते हैं. तो इस तरीके से साथ ही साथ हम इन युवाओं को स्किल्ड मैन पावर के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं, यानी कि वो एक पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं या अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोल निभाए जा सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, वो विभिन्न भाषाएं सीख के.
1: बहुत जरूरी है.
0: तो इस तरीके के काम है जो युवा बहुत आसानी से कर सकते हैं और जो उनके रोजगार में भी सहायक होगा और जो उनकी नॉलेज भी एनहेंस करेगा
1: जी.
0: तो ये दो प्रश्न
1: जी. एक मेरे दिमाग में जब मैं ये कार्यक्रम सोच रही थी करने की, मैंने सोचा था आप आएंगी तो जरूर पूछूंगी, उसका जवाब आपने दे दिया कि कैसे कोई कोई इलाज कराना चाहे तो वो दूर सुदूर देश में बैठ के ये सोच सकता है कि मैं सही जगह जा रहा हूं कि नहीं, वो NABH एक्रेडिट है कि नहीं, कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें उसको जानना, उसको कलेक्ट करना और प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा. तो आप ये बता रही हैं कि उसके लिए एक पोर्टल किया जा रहा है, तो अभी वो सारी इंफॉर्मेशन वहां फर्स्ट हैंड

0: जाएगी
1: बिल्कुल और ये पोर्टल हम लोग हमारे जो मिशन्स हैं हर कंट्री में इंडिया मिशन होता है हमारी एम्बेसीज होती हैं उनमें भी ये पोर्टल अवेलेबल रहेगा ताकि जब लोग वीजा के लिए आते हैं तो उनको उस पोर्टल के बारे में बताया जाए कि भाई ये लिंक है आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के इसमें अस्पताल हैं डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आपको पैसों से लेके आपके पेशेंट के लिए जिस डॉक्टर ने ये सर्जरी करी है उसका आउटकम क्या है वो भी होना चाहिए ताकि
0: कुछ रिव्यूज भी जैसे आजकल लोग पढ़ना चाहते हैं
1: जी वो सब कुछ अवेलेबल होगा
0: अंडर तक लॉन्च होगा मैम
1: हमने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया डेटा हमारे पास पूरा ऑलरेडी है हमें सिर्फ अब एक सही हम कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसपे ऑलरेडी हम लोग टेंडर कर चुके हैं मुझे लगता है 2 महीनों के अंदर ये पोर्टल पूरा लॉन्च हो जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन वन क्लिक पे अवेलेबल होगी सारे देशों में
0: तो हमारी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द ये शुरू हो और मैं श्रोताओं को बता दूं कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं डॉक्टर उपासना शी इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो आपकी आवाज हमारे श्रोता सुन ही रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि इतनी मधुर आपकी आवाज है और आप बहुत अच्छा गाती भी हैं ऐसा मुझे पता चला है तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए
1: जी मैं अपने अस्पताल में अपने डॉक्टर्स के लिए हमेशा गाती हूं
0: जी
1: तो वो मैं आज आपके सामने
0: प्लीज

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं एफएम रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। और आज एक खास टॉपिक एक खास एक्सपर्ट के साथ हम कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म और बहुत सारी बातें अभी हमें डॉक्टर उपासना अरोड़ा से जानना बाकी है और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं कॉल्स भी आ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मैडम है फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो मैडम जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
2: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी
2: अच्छा मैडम जी, जैसे कि अपने देश के लोग हैं, मैं मान लो हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, बीपीएल कार्ड भी है और दिमाग की दवाइयां भी खाते हैं लगातार और कई और भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे लीवर वगैरह की
1: जी।
2: तो हमारे लिए क्या प्रावधान है मैडम इस योजना में और इसकी जो है ना वो डिटेल वगैरह कहाँ से चेक कर सकते हैं?
3: ये देखिए जो आज का कार्यक्रम है ये तो उनके लिए है जो बाहर से आते हैं, लेकिन आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी ऐसे अस्पताल में जा सकते हैं जिसने खुद को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा हुआ है। सारे प्राइवेट अस्पताल नहीं जुड़ते, कुछ लोगों ने लिया हुआ है। साथ ही साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे और अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो वो आपको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट देंगे और आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट पूरी तरह से मुफ्त है किसी भी पेशेंट के लिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड है। और हर वो अस्पताल जो आयुष्मान से जुड़ा हुआ है वो आपको 5 लाख तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त देता है।
1: धन्यवाद संजीव जी, आप निरंतर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। आप मैम यशोदा हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी 2006 में, लगभग 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं और बहुत सारे आपने चेंजेस भी देखे, लेकिन एक बात जो सीधे आप से जुड़ती है और बहुत लोगों से मैं सुन चुकी हूँ कि आप जब से हेल्थ सेक्टर में आई हैं तो एक पेशेंट सेंट्रिक जिस तरह से स्वास्थ्य होना चाहिए, एक क्वालिटी एश्योरेंस और एक वैल्यू बेस्ड केयर, इस पर आपने बहुत जोर दिया है और इस पर आप काफी ज्यादा वर्क भी करती हैं। तो ये जो आपके आइडल्स हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
3: पहले तो मैं बता दूं, मैं 26 सालों से काम कर रही हूँ।
1: ओके।
3: और पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी मेरी जिंदगी में आया 2008 में।
1: ओके।
3: उसके बाद से मैं कहूंगी मेरा पूरा जीवन बदल गया। जहां हम लोग उससे पहले क्या था, जब तक एनएबीएच नहीं कर रहे थे, क्वालिटी में नहीं गए थे लोग, 2006 में एनएबीएच आया था भारतवर्ष में। उसके बाद 2008 में मैंने प्री असेसमेंट के लिए अपने अस्पताल के लिए अप्लाई किया, तो जो उसकी गाइडलाइन थी जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे को एक बात समझ में आई जो मैं अभी भी अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, सिर्फ एक काम करने की जरूरत होती है एक अस्पताल में, अपने पेशेंट को सेफ रखो, सही ट्रीटमेंट करो और उसको खुशी खुशी घर भेजो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, जो हमारा पेशेंट सेफ्टी गोल हम लोग मान के

0: चलते हैं
1: जी
0: कि पुटिंग पेशेंट फर्स्ट, अगर हमारे लिए एक अस्पताल में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैं मानती हूँ वो है एक पेशेंट, अगर वो पेशेंट ही नहीं होगा तो बाकी सारा जो भी चाहे डॉक्टर है चाहे नर्स है वार्ड बॉय या अस्पताल का मालिक है वो क्या करेगा। तो पेशेंट अगर आया है तो पूरा कंसंट्रेशन रखो। साथ ही साथ हमें एनएबीएच ने सिखाया कि कैसे आप सही ट्रीटमेंट दें, कैसे हम अपनी एरर्स को कम कर सकते हैं। ओटी में जैसे चेकलिस्ट हम लोग चलाते हैं जिसकी वजह से कभी भी रॉन्ग साइड सर्जरी नहीं होती, कभी भी कोई रॉन्ग मेडिसिन नहीं जाती। तो ये सारी चीजें जो पेशेंट से रिलेटेड हैं ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि 2008 में हमने प्री असेसमेंट के लिए अप्लाई किया। फिर उस समय पहले प्री असेसमेंट होता था फिर असेसमेंट होता था, बीच का गैप मिलता था आपको अपनी कमियां दूर करने का। 2010 में हमको एक्रेडिटेशन मिला जो कि हमारे एरिया का पहला अस्पताल था, उसने और मोटिवेट किया। फिर मैंने कोर्स किया एनएबीएच का और धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें हम लोग पहले बाहर के अस्पतालों में ढूंढते थे, विदेशों में ढूंढते थे, वो अगर आज आप किसी भी अच्छे अस्पताल में जाके देखेंगे हिंदुस्तान में जो कि एक्रेडिटेड अस्पताल है, आपको वो दूसरे देशों से, क्योंकि मैं अभी अमेरिका भी रहकर आई, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, ऑल ऑफ सडन हम किसी ट्रिप पे गए थे,
1: अच्छा
0: नया अस्पताल बन रहा था तो हम लोग इक्विपमेंट वगैरह देखने गए थे, वहां उनको डेंगू हुआ तो उनको एडमिट होना पड़ा। तो मैंने देखा कि भारत में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने पेशेंट के लिए और डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। रात में जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो देयर वॉज नो डॉक्टर इन हॉस्पिटल, जबकि मैं नाम नहीं लूंगी अमेरिका का भी बेस्ट अस्पताल था और हमने उसमें भी बेस्ट कमरा लिया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी जो 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा से घिरे हुए हैं हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो दैट इज वाई आई से कि हमारा हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन देश है और हमारे डॉक्टर सबसे बेहतरीन है
1: जी। और आप वहां रहकर आई और आप उसी फील्ड की हैं तो आप जो सोच रही हैं या जो आपका जजमेंट है मुझे लगता है वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसा कोई जाए तो हमें तो पता भी नहीं होगा कि क्या डिफरेंस है, बट यू कुड फील दैट डिफरेंस। और देखिए हमारे पास मैसेजेस बहुत आ गए हैं। जी आर पॉल और पूरा पॉल परिवार सौरभ नगर जलंधर से हमें सुन रहा है, लिख रहा है आज प्रोग्राम वेरी नाइस है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर उपासना और शालिनी मैम को नमस्कार। कैंसर में परिवार का क्या रोल होना चाहिए, आर्थिक पक्ष पर रोशनी डालें। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। तो आज तो इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म और पर्यटन को जोड़ने के लिए उपचार और रिकवरी यानी स्वस्थ होने की प्रक्रिया को कैसे मिश्रित कर सकते हैं ताकि पर्यटन विभाग और हॉस्पिटल साथ मिलकर वेलनेस पैकेज बना सके, ये जानना चाहे हमारे एक श्रोता ने।
0: देखिए इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं अभी आगे आपको यही बताने वाली थी कि अब इंडिया सिर्फ मॉडर्न साइंस को ऑफर नहीं कर रहा, हमारा यूएसपी है हॉलिस्टिक हीलिंग, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट मेडिसिन हैं चाहे वो हमारी आयुर्वेदा है चाहे यूनानी है चाहे सिद्धा है चाहे योगा है, बहुत कुछ है हमारे पास
1: जी।
0: तो हम अब जैसे मैंने अपने नए अस्पताल में भी मैं आयुर्वेदा भी कर रही हूं ताकि हम जब भी किसी को बुलाएं तो हम ये कह सकें कि भाई बाकी जो हमारे और देश हैं जहां पे लोग इलाज कराने जाते हैं टर्की वगैरह वहां पे ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है कि भारतवर्ष आपको हॉलिस्टिक हीलिंग दे रहा है। और जैसे कि प्रश्न है कि हॉलिस्टिक हीलिंग हम कैसे करेंगे, तो प्रश्न उसका उत्तर ये है कि जैसे मान लीजिए एक लंबी सर्जरी होती है, रादर आज तो मैं एक अभी जहां पे एक मीटिंग से आ रही हूं वहां पे हमने स्पिरिचुअल ट्रेवल की भी बात करी है।
1: अच्छा
0: सो हम हॉलिस्टिक हीलिंग में स्पिरिचुअलिटी भी डाल रहे हैं, जैसे अगर आप मेरे अस्पताल में आएंगे तो ओम बज रहा है बिकॉज इट हैज ए हीलिंग पावर। हम कोशिश करते हैं जैसे पेशेंट की सर्जरी हो गई उसको बाद हम उसको जब थोड़ा सा वो ठीक होता है योगा करने लायक प्राणायाम करने लायक वो कराते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको जो बाद की प्रक्रिया है, जो सर्जरी तो देखिए आपने मॉडर्न साइंस से कर दी, उसके बाद उसकी हीलिंग के लिए हम ये सारी नुस्खे आजमाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट खुद को बेहतर महसूस करे,
1: रिकवरी या रिहैबिलिटेशन
0: जो होता है अंदर से खुद को वेल बीइंग फील करना, वो उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो एक तो ये हो गया इनके प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न इनका क्या था,
1: इन्होंने यही पूछा था.
0: अच्छा.
1: हां जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये देवदत्त पारसोलिया जी ने हमें लिखा है, नमस्कार टू डॉक्टर साहेब, ही इज लाइकिंग योर वॉइस. आपकी तारीफ कर रहे हैं आवाज की. और मुझे भी उन्होंने नमस्ते लिखा है, रिस्पेक्टेड टीम को लिखा है.

0: Nice topic, super program, excellent program. Thank you so much. और ये लिखा है हमें प्रकाश चंद्र जी ने रोहिणी दिल्ली से कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं. तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बारे में अवेयरनेस हो, इसीलिए आज हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं और एक ऐसा एक्सपर्ट हमारे साथ है जो इस विषय पर संपूर्ण जानकारी रखता है. और मोहम्मद इब्राहिम ने हमें दोबारा लिखा है कि मैडम ये बताइए कि मेडिकल फैसिलिटीज आपकी जो चेन है या हॉस्पिटल्स में इंडिया में, वो कैसी फैसिलिटीज प्रदान की जा रही हैं जिसके लिए लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं?
1: देखिए अभी भी अगर मैं अपना भी अगर मैं सिर्फ अपने अस्पताल का उदाहरण दूं तो भी मैं आपको बताऊं अभी भी मेरे पास कम से कम 10-15 पेशेंट होंगे जो बाहर के हैं.
0: अच्छा.
1: जो दूसरे देशों से आए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या कुछ ताइवान से भी लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग देश हैं. लेकिन मैं कुछ बातें और भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि जब एक विदेशी पेशेंट बाहर से आता है तो सिर्फ एक अस्पताल में ही नहीं जाता, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है. टैक्सी चलती है क्योंकि हम लोग टैक्सी हायर करते हैं, हमने टाई अप्स कर लिए हैं कि भाई पेशेंट को लेकर आओ एयरपोर्ट से अस्पताल तक, तो एक वो काम हुआ. फिर पेशेंट के अटेंडेंट होटल में रुकते हैं, उनको काम मिलता है. फिर पेशेंट का अटेंडेंट सिर्फ अस्पताल में ही खाना नहीं खाता, वो बाहर भी जाता है, कुछ खाता भी है, कुछ खरीदता भी है. तो अगर आप देखें तो ये बहुत सारा रोजगार भी जनरेट हो रहा है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के साथ साथ. और हम लोग तो बहुत हाई एंड सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरी. कैंसर का बिगेस्ट सेंटर है हमारा यशोदा मेडिसिटी, जिसमें 4 रेडिएशन के लिनैक अंडर 1 रूफ, जिसमें MR लिनैक विच इज टोटली न्यू. उसकी विशेषता यह है कि जिस समय डॉक्टर ट्यूमर देख रहा है वो उसी समय उसको ट्रीट भी कर देगा. तो वो देखने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और चूंकि वो MR है, CT नहीं है, तो रेडिएशन भी बहुत कम है. साथ ही हम लोगों ने बहुत सारा प्रिसीजन ट्रीटमेंट भी करा है अपने कैंसर में, एग्जैक्ट ट्रैक लगा के, ताकि पेशेंट को जिस जगह जरूरत है उतनी जगह ही रेडिएशन मिले, रेडिएशन बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए. तो ऐसी चीजों के लिए लोग बाहर से भारत आते हैं. और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक अपने सारे दर्शकों से निवेदन करती हूं, अंग दान को बहुत बढ़ावा दें. कारण क्या है कि मैंने देखा साउथ इंडिया में बहुत सारा ट्रांसप्लांट हो पाता है,
0: जी जी,
1: जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा. क्योंकि लोग किसी भी, जैसे मैंने अपना सारा ऑर्गन डोनेट किया हुआ 15 साल पहले. मैं चाहती हूं हम सब लोग शपथ लें, मेरे अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा है, लेकिन चूंकि कोई डोनेट नहीं करता तो नॉर्थ में डोनेशन नहीं हो पाता. और कभी भी कोई ये ना सोचे कि अगर विदेशियों को हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है. सरकारी नियम बिल्कुल साफ साफ हैं. पहली प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट को मिलती है, दूसरी प्रेफरेंस उस स्टेट को मिलती है, तीसरी प्रेफरेंस भारतवर्ष को मिलती है, चौथी प्रेफरेंस में विदेशी नागरिक आते हैं. तो जो भी अंग निकलता है वो पहली प्रेफरेंस, जो भी नोटों में अपने आप को रजिस्टर करे हुए लोग हैं उनको ही मिलेगा.
0: जी बिल्कुल जी. बहुत अच्छी बात. और हम भी समय समय पर कार्यक्रम करते रहे हैं, करते रहेंगे, नोटों पे, सोटों पे कि किस तरह से अंगदान करना चाहिए. इस कार्यक्रम में भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपने विशेष ये एक दलील की है तो हमारे श्रोताओं से रिक्वेस्ट की है, तो जरूर हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता माने इस बात को. और मैम इस चीज को फर्स्ट हैंड देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, तो हमारे पास मैसेजेस भी बहुत हैं. लेकिन एक मेरा प्रश्न था, क्योंकि मैं ये चाह रही हूं कि हमारी संपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाए जब तक आप यहां कार्यक्रम चल रहे, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए लोग ज्यादातर आते हैं.
1: सबसे पहले नंबर पे लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे लोग आते हैं अपनी ट्रांसप्लांट्स के लिए, तीसरा न्यूरो सर्जरीज के लिए.
0: अच्छा.
1: न्यूरो का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की जिंदगी में. मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ. एक पेशेंट हमारे पास आया था, शायद कांगो साउथ अफ्रीका के किसी जगह से था वो. उसके सर पे इतना बड़ा ट्यूमर था, इतना बड़ा ट्यूमर था कि मतलब जैसे गोभी का फूल.
0: ओ, अच्छा.
1: उसको दिखाई नहीं देता था, उसे सुनाई भी नहीं देता था, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था. फिर जब उसको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ और उसका पूरा हमने, हमारे डॉक्टर्स ने ट्यूमर निकाला, उसके घर वालों ने जब हमारे यहाँ रिकवर होके गया तो काफी इम्प्रूव था. घर वालों ने बाद में उसका वीडियो भेजा और एक थैंक्स नोट भेजा कि आज वो अपने आप चल फिर पा रहे हैं, वो देख पाते हैं, वो सुन पाते हैं, यानी एक नई जिंदगी. तो न्यूरो सर्जरी, चाहे वो आपकी स्पाइन की हो चाहे ब्रेन की हो, इसके लिए बहुत से देशों से लोग भारत आते हैं. भारत की विशेषता यह है कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड है. क्योंकि अगर आप हमारे किसी भी अस्पताल में जाइए आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो।

0: तो हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे केसेस कर चुके होते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि आजकल जो भारत के अस्पताल हैं दे आर नॉट लेस देन एनी अमेरिकन हॉस्पिटल, रादर आई शुड से आई कैन से that they are better than that.
1: With all the facilities.
0: Mm-hmm. Right now, I am having LN की table जो हमारी spine की होती है.
1: Okay.
0: O arm, जिसमें लगातार CT हो रहा होता है.
1: Mm-hmm.
0: Then we have brain का ultrasound भी हम लोगों ने ले रखा है. Navigation system. Okay. Then there is a special monitor for neurosurgeries, जो एक एक मिनट की अलग से मतलब आता ही डिफरेंट है.
1: mm-hmm.
0: और ये सारी चीजें बड़ी महंगी भी होती हैं. तो हम लोग इतनी बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे.
1: mm-hmm.
0: इसके साथ साथ लोग अपने नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऑर्थोपेडिक भी हमारे डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन करते हैं, यहां तक कि एल्बो रिप्लेसमेंट एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो वो भी इंडिया में होता है. लोग उसके लिए आते हैं. और कभी कभी जो मैं आजकल एक ट्रेंड देख रही हूँ, रेस्पिरेटरी के लिए लोगों ने आना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का रेस्पिरेटरी डॉक्टर बहुत अच्छा होता है.
1: और कॉस्ट वाइज अगर हम उसको देखें
0: तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है. अगर आप किसी भी का, स्पेशली मैं दो बातें बताना भूल गई आपको, डेंटल के लिए तो मेरे पास ही कुछ लोग आते थे जो दुबई से फ्लाइट लेके हमारे अस्पताल आते थे. और मैं एक दिन बाई चांस राउंड पे थी तो मैंने देखा एक लड़की अपनी 6 RCT करा रही है. तो मैंने कहा एक साथ 6 क्यों करा रही है, बोली मेरी फ्लाइट है ना तो मैं करा के चली जाऊंगी. तो डेंटल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है. साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजी के लिए लोग बहुत आने लगे हैं. हेयर ट्रांसप्लांट, नोज ठीक कराना, लुक्स ठीक कराना, या स्किन की और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए, बिकॉज हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल है और हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड है.
1: जी. तो अभी हमने पॉजिटिव बात की, मैं ये जानना चाहूंगी क्या कुछ चैलेंजेस भी आते हैं अगर हम मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और आपने बताया भी, या तो इस सपोर्ट के बारे में भी मैं चाहूंगी, हमारे पास समय थोड़ा कम है, कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमारे श्रोताओं को नियर फ्यूचर मिलेगा, और कुछ चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं.
0: चैलेंजेस ये आते हैं कि जब कभी कुछ लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे एक इंडिविजुअल ने किसी को भी कहीं भी ले गया किसी भी अस्पताल में, जिस अस्पताल में सुविधाएं नहीं है या लोगों को पता नहीं है, वो अननेसेसरी का आप ये समझिए कि अगर जो चीज 2000 में हो सकती है वो उसको 10,000 रुपए लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो चाहता है कि हमारी इमेज बाहर ना खराब हो, उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जब कोई गलत आदमी इस काम में उतरता है. दूसरा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो हम लोगों ने जब से उनसे ये कहा है कि हमें कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए, तो कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए मतलब फ्लाइट्स जहां से पेशेंट आ रहे हैं, हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके दे दिया कि भाई इस कंट्री से लोग आते हैं, वहां हमें ज्यादा कनेक्टिंग फ्लाइट दीजिए, हमें वाया मत भेजिए. कि अगर कोई पेशेंट अपने देश से उड़े तो सीधे हमारे देश में उतरे. दूसरा, हम चाहते हैं उसके लिए ग्रीन चैनल बने, सो दैट ही शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग. अस्पतालों को, यानी जिस अस्पताल के लिए वो आया है पेशेंट, वहां से वो उसको फ्लाइट से ही ले ले और सीधे अपने हॉस्पिटल ले जाए, यानी उनको सारी सुविधाएं मिले. तो इन सब में गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है. और साथ ही साथ हमने एक हेल्प डेस्क की मांग करी है जो ऑलरेडी पूरी हो गई है, कि बड़े एयरपोर्ट्स पे हेल्प डेस्क हो, कि जैसे अगर कोई बिना किसी जानकारी के ही आ गया हिंदुस्तान तो वो क्या करे, उसने कहीं सुना कि हिंदुस्तान में बढ़िया इलाज है, आप चलिए वहां आए, तो उसको एक हेल्प डेस्क मिले जिसपे कोई बैठा हो, जो उसको वो पोर्टल भी दिखा सके कि भाई ये अस्पताल है, ये खर्चा है, आप यहां जाइए, तो सही जगह पे व्यक्ति पहुंचे. और जो हमारे भारत इमेज भारत हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, अभी जो हर अस्पताल अपनी अपनी प्रशंसा करता है जाके अलग अलग देशों में, हम चाहते हैं वो एक फैशन बंद हो और हम एक इमेज इंडिया, या हम भारत कहना चाहते हैं कि इमेज भारत को मेंटेन करके दूसरे देशों तक पहुंचाएं. तो जो चैलेंजेस थे धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, और हम लोगों ने फैसिलिटेटर्स को भी हम लोग एक्रेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो लोग इस बिजनेस में हैं उनके लिए भी कुछ नियम कानून हो जिसको वो पालन करें ही करें. तो ये है कुछ बातें
1: जिससे कि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो. तो यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, बहुत ही प्यारा गीत है, मैडम को भी बहुत पसंद है, तो ये गीत सुन लेते हैं. लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी रहेगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स वही है, हमारा व्हाट्सएप वही है, इंतजार मत कीजिए, फटाफट फोन करिए, हम आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर. बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था, जब कोई बात बिगड़ जाए. और बिल्कुल, जब कोई बात बिगड़ती है यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बात बिगड़ती है तो रेडियो डॉक्टर आ जाता है आपकी हेल्प के लिए. और प्रतिदिन आता है, जिससे हम रोज पूछते हैं आपसे, आप आज ठीक है ना, और आप हमें जवाब देते हैं फीडबैक के माध्यम से कि आप बिल्कुल ठीक है और हमारे कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं. तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें फीडबैक लिख सकते हैं. हमारा मेल आईडी भी आपको याद हो गया है, healthaiadelhi@gmail.com. और बहुत शीघ्र आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन पाएंगे. हमारा यूट्यूब का जो चैनल का आईडी है वो है आकाशवाणी AIR. तो इंतजार करिए. पर आज का इंतजार तो अभी बाकी है ना, 2-3 मिनट का, तो क्यों ना हम उसका भी फुल यूटिलाइजेशन कर ले. मैम ये बताइए चलने से पहले कि अगर कोई मेडिकल टूरिज्म में आना सोच रहा है कि आए इंडिया और इलाज कराए, तो व्हाट शुड बी द चेकलिस्ट, क्या क्या देखना चाहिए उसको?
1: देखिए, एक तो आजकल कुछ इंडियन जो हमारी बीमा भली कंपनियां होती हैं जो स्वास्थ्य बीमा करती हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस हो गया या ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, उनके भी टाई अप्स हो गए हैं विदेशी कंपनियों के साथ. तो अगर आप आउट ऑफ द पॉकेट नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो रीइंबर्समेंट हो वो आपके इंश्योरेंस से है, और आप मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप कजाकिस्तान में है, वहां की कोई एक बीमा कंपनी है, तो आप चेक कर सकते हैं.

0: कि हिंदुस्तान के किस अस्पताल में उसके साथ टाई अप है. दूसरा, आप देख सकते हैं कि किस अस्पताल का आउटकम अच्छा है, जो कि एक पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं, या आपने जो वेबसाइट्स हैं हॉस्पिटल की आप वो चेक कर सकते हैं. आपको ये देखना है कि जहां आप आ रहे हैं क्या वहां पर आपकी भाषा का इंटरप्रेटर मौजूद है, ताकि आप सारी बातें सही तरीके से समझ सकें. क्या आप जिस इलाज के लिए आ रहे हैं वहां पे उस डॉक्टर का आउटकम क्या है, आप वो भी देख सकते हैं. साथ ही साथ कितना खर्चा है आप वो भी देख सकते हैं.
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज हमें जानने को मिली. हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आप ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में. और आज का हमारा विषय था मेडिकल टूरिज्म पर. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार डॉक्टर मैम, यहाँ आने के लिए, हमारे हमें टाइम देने के लिए
0: धन्यवाद.
1: और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

دل سے دل تک آؤ آرمبھ ہے جیسے شو سوریلا آفٹرنون آؤ سوریلا آفٹرنون شو نہیں مو رینبو اسٹوڈیو ایسے پہنچی جیسے آپ کو رینبو دوست سوشری ए जो खरा हो छे जीवन टा पूरा अस्त व्यस्त लागलाने साथी इत्ते खरा छे रास्ता घाट पूरा सुनसान स्टूडियो आसला बेळ को लागिला जेमती 17 पौने थरे लॉकडाउन आसी गला की मने अछ ना साथी से समय जेते बेळ लॉकडाउन लागिथिला पूरा ओडिसा रे एमती की पूरा इंडिया रे लागिथिला लॉकडाउन स्त्री के ही बीज बास पा करु नथिले एमति के बुला पशुं को बे देखबा को मिल नथला एबे भी साथी ठीक सेई सेम सिचुएशन देखबा को मिलचे एते खरा रे रास्ते रे मणीस कोन के ही बुला गोरु गाई भी देखा जाउ नांदी सो साथी आपन को भी जदि निहात किछ दरकार न रहउ छे ताले आपन भी टान खरा रे कोड़ भी बाहर को जानतनी आउ जदि किछ काम दरकार पड़ु छि दरकारी काम रे बाहर को जिपा को पड़ु छि ताहले गोटे काम करिबे पाखरे सब बले गोटे पानी बोतल टे निहाती रखिबे आ ता सहित गोटे छत्ता रखिबा को जमर भी हेले भुलिबे नि आउ जो साथी माने घरे रहु छथि कि बा ऑफिस रे रहु छथि से मानु को भी गोटे अनुरोध रहिबो जे आपन टाइमली सफिशिएंट पानी पियंतु निजर जत्न नेबा सहित निज परिवार प्रियजन मानकर जत्न मध्य नियंतो आ एमति ही ट्यून करि थांतो हमको सुनु थांतो किछि मीठा मीठा गीत एई सुरीला आफ्टरनून शो रे सो आरंभ करिबा शो सुरीला आफ्टरनून किंतु आरंभ करिबा पूर्वरु शो को जळी दोछि बड मानको नमस्कार एम सानवान को ढेर सारा प्यार ट्यून कहिसंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को फ्रिक्वेंसी 104.7